0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़कम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़कम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव इडप्पार्नी के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाली गुट ने पार्टी विधायकों को टीवीके सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना। अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवीके सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच कराने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा है कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर

0: जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों की प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पांच देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान दौरे पर रहेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के अल्पकालीन अनुमानों और चौथी तिमाही के अनुमान जारी करने की तिथि संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि 7 जून को अवकाश होने पर अंतिम अनुमान पिछले कार्य वर्ष पर जारी किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये बदलाव आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। फलौदी, जैसलमेर, बीकानेर और चित्तौड़गढ़ में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। वहीं जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिन तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटन्स ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मिजम वेब 213.67 मीटर तथा 1404 किलोहर्चमा हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। यसका साथै श्रोताहरूले हाम्रो यस प्रसारणलाई न्यूज अन एआईआर मोबाइल एप अनि एफएम कञ्चनजंघा 103 मेगाहर्चमा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। समय यसबेला हाम्रो स्टुडियोको घड़ी अनुसार बिहानीको 7:05 भइरहेको छ र श्रोताहरूको सामु हामी उपस्थित भएका छौ पुराना सदाबहार हिन्दी चलचित्रका गीतहरूको कार्यक्रम गोल्डन मेलोडीज लिएर। हजुर श्रोता, कार्यक्रम गोल्डन मेलोडीजमा सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई स्वागत जनाउँदै यो पहिलो प्रस्तुति सुनाउन लागिरहेका छौ सन 1972 सालमा निर्मित चलचित्र मेरे जीवन साथीबाट। विनोद शाहद्वारा निर्मित अनि रविकान्त नैगजद्वारा निर्देशित यस चलचित्रमा संगीत भर्नुभएको छ आरडी बर्मनले। राजेश खन्ना अनि तनुजाले यस चलचित्रमा मुख्य रूपमा अभिनय गरेका छन्। त श्रोता, प्रस्तुत छ यसै चलचित्रको यो गीत। कलाकार किशोर कुमारको आवाजमा अनि गीतकार हुनुहुन्छ मजरू सुल्तानपुरी।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: प्रिय श्रोतागण, आकाशवाणी गान्तोक केन्द्रको बिहानी प्रसारण सेवाबाट सुनिरहनु भएको छ कार्यक्रम गोल्डन मेलोडीज, र अब क्रमैले सुनाउन लागिरहेको छौ सन् 1971 सालमा निर्मित चलचित्र आनन्दबाट। ऋषिकेश मुखर्जीद्वारा निर्मित साथै निर्देशित यस चलचित्रका गीतहरूमा संगीत दिनुभएको छ योगेशले, अनि शब्द रहेको छ गुलजारको। राजेश खन्ना

0: नमस्कार श्रोता, कार्यक्रम प्रणाम सिक्किम लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। अनि रुस्तम दाजु, आज पर्यो
1: 13 तारिक
0: भन्नुहोस् न। 13 तारिक
1: हजुर, 13 तारिक मे है।
0: हजुर, मलाई पनि सुन्न अति नै मन लागिरहेको थियो।
1: हिजोको बदला आज लिनुभयो है।
0: हजुर हजुर,
1: निकै रातभरि पनि सोच्नुभयो कि कसो?
0: अब निन्द्रै लागेन।
1: कतिवटा कुराहरू त्यस्ता हुन्छ नि है, कसैले भन्यो है, मनमा लागिबस्छ, कहिले मौका पर्छ तैले चाहिँ बदला लिन्छु भनेर। हुन्छ, आज 13 तारिकमै है, आजको दिन पनि थुप्रै घटनाहरू घटेका छन् र सर्वप्रथम भारतकै प्रसंगलाई लिएर आजको हामी कार्यक्रमको थालनी गर्न चाहन्छौ। र आजको दिन 1952 भारतमा प्रथम पल्ट राज्यसभाको सदन सञ्चालन भएको थियो र प्रथम राज्यसभाका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो डाक्टर एस राधाकृष्णन। उसै गरी 1905 आजको दिन भारतका पाँचौं राष्ट्रपति एवं स्वतन्त्र सेनानी फखरुद्दीन अली अहमदको पनि जन्म भएको थियो र उहाँबारे छोटो जानकारी हामी श्रोता समक्ष राख्न चाहन्छौ।
2: अमर स्वाधीनता सेनानी और भारत के पांचवें राष्ट्रपति डॉ फखरुद्दीन अली अहमद का जन्म 13 मई 1905 को पुरानी दिल्ली के हौज काजी इलाके में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा के सरकारी स्कूल में हुई और मैट्रिक दिल्ली से करने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 1923 में ये इंग्लैंड चले गए। वहाँ इन्होंने सेंट कैथरीन कॉलेज कैम्ब्रिज में पढ़ाई की और 1928 में लाहौर हाई कोर्ट में वकालत करने लगे। इंग्लैंड प्रवास के दौरान ही फखरुद्दीन अली अहमद की मुलाकात पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई।

0: चुकी थी।
1: नेहरू जी के विचारों से प्रभावित होकर वो उन्हें अपना गुरु तथा मित्र मानने लगे और फिर 1930 से उनके साथ सक्रिय हो गए। उनके साथियों का दबाव था कि वो मुस्लिम लीग में शामिल हो जाएं, लेकिन पंडित नेहरू के अनुरोध पर फखरुद्दीन अली अहमद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने देश की आजादी के लिए वर्ष 1940 में सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय भाग लिया।
0: उन्हें अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। रिहाई के बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें फिर जेल जाना पड़ा और 1945 तक उन्हें जेल में ही रखा गया। उन्होंने भारतीय राज्य असम में आजादी से पहले के दौर में महत्वपूर्ण योगदान किया और चाय बागान मजदूरों का पक्ष लिया।
1: उनके एक आह्वान पर असम ऑयल कंपनी लिमिटेड के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे। अंग्रेजी स्वामित्व वाली इस कंपनी को उन्होंने हिलाकर रख दिया था। आपकी राजनीतिक सक्रियता आजादी के बाद भी जारी रही और 29 अगस्त 1974 को इन्हें भारत का 5वां राष्ट्रपति चुना गया। 11 फरवरी 1977 को 71 वर्ष की आयु में उन्होंने राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में अंतिम सांस ली। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद ने देश की आजादी और राष्ट्र निर्माण दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें कृतज्ञ राष्ट्र का नमन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। समय से पहले दस्तक देगा मॉनसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है।
1: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वासमत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। सहयोगियों के समर्थन के साथ साथ टीवी के सरकार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK से अलग हुए गुट का समर्थन प्राप्त है। इस बीच तमिलनाडु में AIADMK सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडप्पाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ नेता एग्री कृष्णमूर्ति ने चेतावनी दी है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले किसी भी विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने SP वेलुमणि को AIADMK विधायक दल का नेता चुना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
0: वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य सरकार में IAS अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें पूर्व मुख्य सचिव एन मुरुगंदम और वित्त सचिव टी उदय चंद्रन शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्योतिषी रिकी राधान पंडित को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किए जाने पर गठबंधन सहयोगी ने कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल और ज्योतिमणि ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए, जबकि CPIM के राज्य सचिव पी शुनगमुगम ने कहा है कि कदम सरकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ है। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुदुचेरी में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एन रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। क्षेत्रवशी एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह 5वां कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सोनाना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष VP

0: रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमापार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरूद्व भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा कल पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई। नीट यूजी के एक उम्मीदवार के अभिभावक ने लातूर एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि एक निजी कोचिंग संस्थान ने परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट आयोजित किया था, जिसमें कथित तौर पर 42 प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते थे। इससे पहले राजस्थान पुलिस के विशेष जांच दल ने संदिग्ध नेटवर्क और धन के लेनदेन की जांच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कल जयपुर से कथित मास्टरमाइंड मनीष को भी गिरफ्तार किया। इसी महीने की 7 तारीख को सीकर के करियर काउंसलर राकेश कुमार समेत 5 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 4 नीट उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्यभर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। मुख्यमंत्री के काफिले में अब केवल 8 वाहन होंगे और कोई भी वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के वार्षिक और चौथी तिमाही के अनुमानों की प्रकाशन तिथि को संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दिया गया है। मंत्रालय

0: ने कहा है कि यह संशोधन आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। भारत कल से शुरू होने वाली दो दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की तीन दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। युगांडा के राष्ट्रपति युवेरी मुसवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने सातवें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसवेनी पिछले 40 साल से राष्ट्रपति पद पर हैं। श्री मुसवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में हजारों लोगों के बीच पद की शपथ ली। श्री मुसवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किये। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। इस बीच राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा चार पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और छह दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन के साथ रातें भी तप रही हैं और कई स्थानों पर रात का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तापमान के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: महाराष्ट्र के सांगली जिले की जाट तहसील में कल एक धार्मिक सभा के दौरान दीवार गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में सेना के कल पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। हमारे संवाददाता के अनुसार सेना को मिली सूचनाओं के बाद शाम करीब 4 बजे नियंत्रण रेखा के अंदर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इस पर सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में फोगाट ने कोरिया के सेंगुमिन ली को पराजित किया। वहीं 8 भारतीय लड़कियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल में जगह बनाई और 4 ने कांस्य पदक जीते। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। नीट यूजी 2026 की परीक्षा निरस्त करने का समाचार आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है सीबीआई को पेपर लीक की जांच, एक गिरफ्तार, 20 संदिग्ध हिरासत में। दैनिक भास्कर की खबर है 22 लाख अभ्यर्थियों से खिलवाड़, परीक्षा दोबारा होगी, नई तारीखों की घोषणा जल्द। कल से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की समिट, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है पीएम से भी संयुक्त मुलाकात, खाड़ी संकट के बीच दिल्ली पर दुनिया की निगाहें। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के 30 विधायकों का टीवीके को समर्थन का ऐलान, विजय आज बहुमत साबित करेंगे, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। अमर उजाला ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, नया भारत और बदलती सियासी समझ। संपादक का कहना है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे बताते हैं कि देश का मिजाज अब राजनीति में किसी तरह की संकीर्णता को बर्दाश्त

0: बर्दाश्त नहीं करेगा। कोलकाता से लेकर चेन्नई और तिरुवनंतपुरम तक नए की उम्मीद और पुराने के प्रति गुस्से के चलते मौजूदा व्यवस्था बहती दिखी। दैनिक जागरण ने पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के शब्द प्रकाशित किए हैं, पेट्रोल उत्पादों की दिक्कत नहीं लेकिन कंपनियों का घाटा चिंताजनक। शेयर मार्केट में निवेशकों के 9 लाख करोड़ स्वाहा, आखिरी घंटे और बढ़ी गिरावट, सेंसेक्स 1500 प्वाइंट टूटने से मचा हाहाकार, लोकसत्य ने कारोबार पन्ने पर यह खबर प्रकाशित की है। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस बनी लोगों की पहली पसंद, 10 दिनों में करीब 45,000 यात्रियों ने किया सफर, देशबंधु की खबर है। नवभारत टाइम्स ने जनगणना 2027 पर खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, अब QR कोड से जनगणना कर्मियों की होगी पहचान, फर्जी मैसेजेस को लेकर किया फैसला, मेहनत के बिना जवाब, चैटबॉट खत्म कर रहा रचनात्मकता, राजस्थान पत्रिका ने डिजिटल एडिक्शन शीर्षक से खबर प्रकाशित की है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। अखिल भारतीय NR कांग्रेस प्रमुख N रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। मौसम विभाग का अनुमान, समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटन्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Political activities in Tamil Nadu turn hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test today. All India NR Congress leader N. Rangasamy to take oath as Chief Minister of Puducherry today. Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Delhi governments implement measures for fuel consumption following Prime Minister Narendra Modi's austerity appeal. Centre increases import duty on gold and other precious metals. IMD predicts early arrival of monsoon this year. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Sunrisers Hyderabad by 82 runs in Ahmedabad. And now the news in detail. In Tamil Nadu, political activities have turned hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test in the assembly today. In a dramatic turn of events, the AIADMK has split into two groups over extending support to the TVK government. Lone AMMK MLA S. Kamaraj has decided to support the TVK government. We have more from our correspondent.
3: The TVK with allies like the Congress, VCK, CPI, CPIM and IUML had enjoyed a majority of 120 to form the government in Tamil Nadu. After the government was sworn in, now it has the support of 30 AIADMK MLAs from the breakaway faction and one AMMK MLA, having a total of 151 MLAs. TVK will now have to prove the strength of the government today. The AIADMK led by General Secretary E. Palaniswamy has already said that those who do not adhere to the rules of the whip will be expelled from the party. The party founded by MGR will be facing a major political crisis presently. Joy, Akashwani reporting from Chennai.
2: Meanwhile, Tamil Nadu Chief Minister Joseph Vijay has reshuffled IAS officers in the state government, including former Chief Secretary N. Muruganandam and Finance Secretary T. Uday Chandran. The appointment of astrologer Ricky Radhan Pandit as officer on special duty and political wing secretary in the Chief Minister's office has triggered criticism from alliance partners. Congress MPs Sasikant Senthil and Jyoti Mani questioned the appointment, while CPIM State Secretary P. Shanmugam said the move went against the government's responsibility to promote scientific thinking. VCK General Secretary D. Ravi Kumar described the appointment as unacceptable in a secular government and urged reconsideration. All India NR Congress leader N. Rangasamy will be sworn in as the Chief Minister of Puducherry today. At a ceremony to be held at the Lok Nivas, Lieutenant Governor K. Kailashanathan will administer the oath of office and secrecy to Mr. Rangasamy. More from our correspondent.
4: In stark contrast to the post-election political drama witnessed in neighbouring states, Puducherry is poised to witness a

नमस्कार, ट्यून किया है आपने आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रोग्राम शुरू हो चुका है दिल का मेल बॉक्स, जहां मैं यानी नाज आ गई हूं आपसे बातें करने और आपसे सीधे जुड़ने भी ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए। एफएम गोल्ड AIR@delhi@gmail.com पर ईमेल करेंगे या फिर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे आप 9868687 पर। अपना नाम, कहां से लिख रहे हैं और कौन सा गीत सुनना चाहते हैं, ये तो आपको लिखना ही है, साथ में कुछ शेरो शायरी हो जाए या फिर कुछ भी ऐसा जो दिल छू जाए तो बस बात बन जाए। और इसके साथ ही टेस्ट होगी आपकी फिल्मी नॉलेज भी, क्योंकि मैं एक बार फिर लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक खूबसूरत सा म्यूजिक पीस, जिसे प्रोग्राम के बीच बीच में आप सुनते रहेंगे और मुझे बताएंगे कि ये म्यूजिक पीस किस सॉन्ग का हिस्सा है, या फिर आप इसे गाने का प्रिल्यूड भी कह सकते हैं, मतलब गाने का शुरुआती हिस्सा। तो ध्यान से सुनिए आज का वो म्यूजिक पीस। एक बार और सुनिए। तो अगर पहचान लिया है गाना तो मत कीजिए देर और जल्दी से लिख भेजिए गीत के बोल, और फिलहाल एंजॉय कीजिए ये मस्ती भरा गीत मेरी पसंद से।

आपकी दोस्ती ने हमें जीना सिखा दिया, रोते हुए इस दिल को हंसना सिखा दिया। कर्जदार रहेंगे हम उस खुदा के जिसने आप जैसे दोस्त से हमें मिला दिया। नाज जी, होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन, दीपांशु ने ये मैसेज भेजा है और मेरी तरफ से आपको थैंक यू। और अपना फरमाइशी गीत भी लिख भेजा है, लेकिन आज के सवाल का जवाब नहीं भेजा है। और एक खास बात बताऊं, अपनी एक अच्छी आदत के बारे में बताना चाह रही हूं आपको कि मेरी नजर और मेरा ध्यान उसी मैसेज और उसी ईमेल पर टिकता है जिसमें कुछ न कुछ होता है। यानी अच्छी सी शायरी हो, कोई अच्छी सी बात हो, तो वो मैसेज ना मुझे अट्रैक्ट करता है। तो जल्दी से लिख भेजिए कुछ अच्छा सा, क्योंकि सिर्फ नाम पढ़ने में क्या मजा है ना। और इसी के साथ चलिए रुक कर लेते हैं दूसरे मैसेजेस का भी। शमशुर कमर जी ने मैसेज भेजा है शाहीन फातिमा, अदनान खान और अनु खान के साथ अपना फरमाइशी गीत लिख भेजा है और आदाब किया है। हमारी ओर से भी आपको आदाब, आपका दिन शुभ हो। लेकिन आज के सवाल का जवाब और साथ में कुछ अच्छा सा लिखकर भेजिए ना, वक्त बहुत कम है। मैसेजेस और ईमेल तो आप बहुत पहले से भेजना शुरू कर देते हैं, लेकिन शेर व शायरी हो या कोई भी अच्छी सी बात हो, वो लिखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। चलिए कोई नहीं, तब तक मैं आपको कुछ सुना देती हूँ। तो कहा यह गया है कि अगर ये कह दो बगैर मेरे जिंदगी नहीं जा रही गुजारी, तो मैं तुम्हारी, या उस पे मबनी कोई तासुर कोई इशारा, तो मैं तुम्हारी। तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहे लगाऊं बाजी। अगर मैं जीती तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारी तो मैं तुम्हारी। अच्छा है ना, ऐसे ही कुछ आपको भी लिखकर भेजना है, ठीक है। और तब तक मैं सुनवाती हूँ एक और गाना जिसकी फरमाइश हमारे पास आई है कृष्णा पार्क दिल्ली से, सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना, पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबेरॉय की ओर से। तो लीजिए, ये रहा आपका गाना।

जी हाँ, बिल्कुल यही है वो म्यूजिक पीस जिसे आपने सुना और दूसरी बार सुना। इसे सुनकर आपको पहचानना है गाना और मुझे बताना है कि ये किस सॉन्ग का हिस्सा है। बोल आपको लिखकर भेजने हैं fmgoldairdelhi@gmail.com पर या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9868886753 पर। और अब पढ़ते हैं ईमेल्स। लिखा है कि अच्छी बातें जो होती है ना, वो खुशबू की तरह होती हैं। जी हाँ, जितना बांटो उतना ही दिलों में महकती हैं। राजेंद्र जटोलिया जी ने ये मैसेज लिखा है, उषा जटोलिया चारू जटोलिया के साथ दिल्ली नागलोई से, और अपनी फरमाइश भी इन्होंने लिख भेजी है। अगला मैसेज आया है कहां से, मोहाली से, चंडीगढ़ से आया है, सेक्टर 67 से। जी हाँ, 67। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप की ओर से ये मैसेज आया है। और बड़ी ही खूबसूरत बात लिखी है, भाई तेरी हर बात में एक मिठास शामिल हो, होठों पर हमेशा एक मुस्कुराहट शामिल हो, दुनिया की हर खुशी कदम चूमे तुम्हारे, मेरी हर दुआ में बस यही बात शामिल हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगला मैसेज है संदीप मक्कड़ जी का, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल सहनी की ओर से ये मैसेज आया है व्हाट्सएप पर, पिंगा वाला चौक गोराया जालंधर से। और इन्होंने भी बड़ी ही अच्छी बात लिखी है, कई बार ट्रैफिक में फंसा हुआ आदमी आगे वाले को पीछे वाला बोलता है, टीटी पीपी, और सुबह उठने के लिए अलार्म नहीं लगाना पड़ता भाई हमें, क्योंकि गांव में कोयल की बोलने की जो तीव्र आवाज है वो सुबह उठने के लिए मजबूर ही कर देती है, मतलब है कि मोटिवेशन देती है, इंस्पायर करती है। अगर हम चाहते हैं सभी जगह ऐसा ही हो तो मरने से पहले जीना होगा, पेड़ लगाने होंगे,

और सबसे पहले इंसान बनना होगा। बहुत अच्छी बात कही संदीप जी आपने, मैं आपसे बिल्कुल पूरा पूरा इत्तेफाक रखती हूँ और इसी बात पर अब सुनाने जा रही हूँ आपकी ही पसंद का गाना। बहुत ही खूबसूरत फरमाइश है, पहले तो ये कहना चाहूंगी, प्रेम पर्वत फिल्म से है ये गाना और लता जी की आवाज है, सुनिए।

खर्च हो रही है जिंदगी, आजकल हिसाब नहीं रहता। खर्च हो रही है जिंदगी, आजकल हिसाब नहीं रहता कि कितने गम खरीदे हैं खुशियां समझकर, कितने लम्हे बेच दिए मामूली समझकर। मन भारी सा रहता है और जेब हल्की हल्की। कब कमाएंगे उतना कि जितनी खर्च हो रही जिंदगी। जी बिल्कुल, पैसे खर्च हो जाएं तो कोई बात नहीं, कीमत तो असली है वक्त की जो आप हमें दे रहे हैं अपना, अपने ईमेल्स और व्हाट्सएप के जरिए, और उसके लिए बड़ा सा थैंक यू तो बनता है। बातें आगे बढ़ें उससे पहले एक बार फिर सुना देती हूँ वो म्यूजिक पीस जिसे सुनकर आपको आज का गाना पहचानना है। जी तो जवाब लगातार आ रहे हैं आपके, जिन्हें पढ़कर और देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। जल्दी से कुछ और ईमेल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस शामिल कर लेती हूँ। हमने सवाल का जवाब 10:32 पर दिया है। जी आपने कल भी जवाब शामिल नहीं किया था। ये मैसेज आया है जयराम कोरवाल जी का, और आज के सवाल का जवाब भी लिखकर भेजा है इन्होंने। सही है या गलत अब से कुछ ही देर में आप जान जाएंगे, लेकिन फिलहाल उम्मीद है मुझे कि आपकी नाराजगी दूर जरूर हो गई होगी। और कहां से आया ये मैसेज? होली चौक उत्तम नगर से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मैसेज के लिए। अगला मैसेज शामिल करते हैं अब्बासी साहब का। सईद अब्बासी जी का ये मैसेज है, जानकारी साझा की है इन्होंने कि गायक मनहर उदास जी का जन्मदिन है आज, और उन्हीं के एक गीत की फरमाइश लिखकर भेजी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस ईमेल के लिए। और अगला मैसेज शामिल करते हैं, अभी तो मुझे सारे आज के सवाल के जवाब ही नजर आ रहे हैं जिसे मुझे अभी रिवील नहीं करना है, लेकिन कोई बात नहीं। नाज मैडम जी आपको प्यार भरा आदाब फरमाइशी गीत के साथ, लिखा है अनु खान ने अदनान खान, फैजान खान और आबाद खान के साथ। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर मुझे कोई शेर व शायरी नजर नहीं आ रही है, कोई अच्छी सी बात नजर नहीं आ रही है, क्योंकि मैं ढूंढ रही हूं एक ऐसा ही मैसेज। फर्स्ट टाइम आई एम सेंडिंग आपकी आवाज, आपने जो शायरी पढ़ी बहुत अच्छी लगी, अब मैं क्या लिखूं? गंभीर बात है, कोई बात नहीं। एस के खन्ना जी का ये मैसेज है, और थैंक यू इस मैसेज के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस किस के मैसेज अभी अभी आए हैं। तो जॉन डिकेस्ट्रो साहब ने मैसेज कर दिया है, लिख रहे हैं कि गीत बहुत ही अच्छे चल रहे हैं और अपनी पसंद का ही कोई गीत सुनवा दीजिए। रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो के साथ जनकपुरी सहारनपुर से ये मैसेज लिखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी इस मैसेज के लिए। और अगला मैसेज है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा जी का, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार के साथ। लेकिन मैं नाराज हूं आपसे, ना आपने सवाल का जवाब लिखा और ना ही कोई शायरी, ना ही कोई अच्छी बात, ये क्या बात हुई? चलिए कोई बात नहीं, अगली बार भेज दीजिएगा। एक और आया है मैसेज जिसे मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूं। लिखा है कि जब अगली बार आओ तो खूब सारे तोहफे लाना, जब अगली बार आओ तो खूब सारे तोहफे लाना, हम सच के आएंगे, हमें निहारने के लिए वक्त लाना। क्या बात है, बहुत अच्छी बात लिखी, बहुत ही खूबसूरत शायरी है। और एक खास बात बताऊं कि रिमाइंड करवाया है कि क्या ये मैसेज पढ़ा आपने? बहुत बढ़िया, छवि जी का ये मैसेज है जहां तक मैं समझ पा रही हूं, क्योंकि नाम इसमें हाँ लिखा है छवि कॉल, रोहिन कॉल के साथ, सुमन कॉल भी इनके साथ

शामिल हैं। और कहां से आया है ये मैसेज? गाजियाबाद से, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, अब घड़ी बहुत तेजी से भाग रही है, तो मुझे बताना होगा आज के सवाल का जवाब और उस गाने की लिरिक्स, और साथ में वो गाना भी सुनवाना होगा जिसका प्रिल्यूड आपने सुना। तो दोस्तों, ये प्रिल्यूड हिस्सा है एक चार्ट बस्टर सॉन्ग का। फिल्म है साल 1991 में आई सौदागर, और जिसमें हमारे हीरो बड़े ही प्यार से अपनी हीरोइन को आई लव यू की शॉर्ट फॉर्म यानी ILU यानी ईलू ईलू से रूबरू करवाता है। मतलब कि बड़े डिटेल में वो इस लव्स के मायने समझाता है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक, आनंद बख्शी साहब के बोल इस ट्रैक की जान है। साथ ही कविता कृष्णमूर्ति के साथ उदित नारायण, मनहर उदास और सुखविंदर सिंह को आप सुनते हैं और बस सुनते ही रह जाते हैं। तो फिर चलिए, आप और मैं इंजॉय करें ये आइकॉनिक सॉन्ग। उससे पहले जान लेते हैं उन धुरंधरों के नाम जिन्होंने पहचाना इस धुन को और दिया बिल्कुल सही जवाब। रविंद्र कंपैली जी महाराष्ट्र से, सईद अब्बासी बुलंदशहर से, तिलक राज अरोड़ा खुर्जा यूपी से, सुभाष दिल्ली से, कृष्ण कुमार गुप्ता महोबा यूपी से, अनीता वर्मा पीतमपुरा दिल्ली से, सुदर्शन मुखी शांतिनगर सोनीपत से, मेहर अरोड़ा श्रीगंगानगर राजस्थान से, राजकुमार डूडी हिसार से, बोध राज खोरवाल उत्तम नगर दिल्ली से। ये नाम तो देखिए मैं लिख पाई हूं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे मैसेजेस आए हैं जिन्हें मैं शामिल करने की कोशिश चलिए कर लेती हूं कुछ ही पलों में। बबलेश पंवार जी ने भी मैसेज लिखा है और सही जवाब के साथ लिखा है, लिख रहे हैं कि अब मैं बुरा नहीं मानता। मैं हमेशा सुनता हूं सबकी, पर अब मैं बुरा नहीं मानता। कौन क्या कहता है मेरे पीछे इस बात की परवाह नहीं ठानता। चलते चलते राहों पर अगर कोई शूल कभी चुभ जाए, कोई दे दे जख्म जबां से, तो मैं रुकता नहीं चलता जाता हूँ। ताने हो या कोई कड़वी बात, सबको खामोशी से सुन लेता हूँ। बुरा मानकर अपना वक्त गंवाने से अच्छा मैं अपने ही सुकून के धागे बुन लेता हूँ। बहुत अच्छा करते हैं, सबको ऐसा ही करना चाहिए। जी हाँ, डैनी पवार मनीष पवार के साथ गांधी चौक बाड़मेर राज से ये मैसेज लिखा और दिया आज के सवाल का सही जवाब भी। दोस्तों, सॉरी बोलूंगी उन सभी लिसनर्स को जिनके नाम मैं शामिल नहीं कर पाई हूँ वक्त की कमी के चलते, और सुनाऊंगी आपको ये खूबसूरत गीत जिसे आप सबने पहचाना और क्या खूब पहचाना। ठीक है, आप जाएंगे कहीं नहीं क्योंकि इस गाने के बाद होंगे समाचार और मैं फिर मिलूंगी आपसे। कार्यक्रम

0: अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: ना रंगासामी कड़वलीन पेयराल उरुदी कूरुदावदु नान नेर्मुगमागवो अल्लदु मरेमुगमागवो ओरुवरुक्को अल्लदु पलरुक्को இந்திய ஒன்றியத்தின் புதுச்சேரி ஆட்சி பரப்பின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் என் கவனத்திற்கு கொண்டுவரப்படும் அல்லது எனக்கு தெரியவரும் எந்த செய்தியையும் மேற்கூறிய முதலமைச்சர் என்ற வகையில் என்னுடைய கடமைகளை முறையாக ஆற்றுவதற்கு தேவைப்பட்டாலன்றி தெரிவிக்கவோ அல்லது வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன்.
0: अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के ए नमस्सीवेयम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, भाजपा नेता अध्यक्ष वीपी रामलिंगम अधिकारी और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वित्री कड़गम टीवीके के सरकार को विधानसभा में आज बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वासमत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी गुजरात और असम की उनकी हालिया यात्राओं के दौरान लागू की गई थी। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की है। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। वे आज चिली के विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोपहर बाद वे दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। शाम को डॉ जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गे लावरोव से भी मिलेंगे। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नाशिक पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट ने कल महाराष्ट्र के नाशिक से शुभम को हिरासत में लिया। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बीच कल रद्द कर दी गई थी। सरकार ने सीबीआई को अनियमितताओं की व्यापक जांच के निर्देश दिए हैं। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का 38 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतीक यादव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज शुरूआती कारोबार से पहले मामूली रूप से बढ़त नजर आई और फिर इसमें गिरावट दर्ज की गई। शुरूआती कारोबार में सेंसेक्स 75 अंक की अधिक की वृद्धि के साथ खुला और बाद में 180 अंक गिरकर 74,360 पर आ गया। निफ्टी 41 अंक की गिरावट के साथ 24,350 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम और आदाब। 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ट्यून कर चुके हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जहां मैं आपकी होस्ट और घुमक्कड़ दोस्त नाज हूं आपके साथ। नजरे घुमाकर देखा है मैंने तो पाया है कि स्टूडियो की घड़ी का है इशारा कि समय हुआ है इस वक्त 11:11 भी हो गए। और जैसा कि आप जानते ही हैं, ये समय है एक दिलकश और खूबसूरत सफर का विद मेलोडियस ट्रैक्स ऑफ ओल्ड एरा, क्योंकि ये टाइम है तस्वीर का। ठंडा मौसम, हल्की बारिश, हाथ में उसका हाथ था, चंद कदम हम साथ चले थे, आंख खुली तो ख्वाब था। लेकिन जनाब, ये कोई ख्वाब नहीं है, शत प्रतिशत आप जागे हुए हैं और मेरे साथ चंद कदम नहीं बल्कि बड़ी दूर तक चलना है आपको। कहाँ, यही तो गेस करना है भाई। ना तो बारिश का मौसम है और ना ही फिलहाल कोई आसार। हालांकि सुबह लग रहा था दिल्ली में कि बारिश होगी, पर अभी फिलहाल मुझे कोई आसार नजर नहीं आ रहे। तो ये शेर मैंने क्यों पढ़ा, अगर आप ये सोच रहे हैं तो भाई, ये शेर था आपके लिए एक क्लू उस खूबसूरत जगह के बारे में जहां की सैर आज आप मेरे साथ करने वाले हैं। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में मौजूद है, बादलों और नेचर का घर है, स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट के नाम से मशहूर है। और भाई कसम से बड़ी कमाल जगह है, ऑफिशियली सोहरा है इसका नाम। तो फिर देरी का अब क्या काम, सारे हिंट्स दे दिए हैं मैंने और आप समझ ही गए होंगे कि कहां की तस्वीर के दीदार आप मेरे साथ करेंगे आज। जल्दी से लिख भेजिए fmgoldairdelhi@gmail.com पर ईमेल के जरिए या फिर 9868886753 पर कर दीजिए व्हाट्सएप मैसेज। थोड़ा जल्दी कीजिएगा। इस अमेजिंग ट्रैक को सुनने के बाद मैं बताऊंगी कि क्या है और कहां है ये जगह।

जी हाँ बिल्कुल, 16 आने सही गेस किया है आपने। टिप टिप नहीं बल्कि मूसलाधार बारिश के लिए दुनिया भर में मशहूर चेरापूंजी चल रहे हैं आप तस्वीर में मेरे यानी नाज के साथ। और किस किस ने किया सही गेस, उनका नाम लिए बिना तो चेरापूंजी में एंट्री मिलेगी नहीं। तो भाई शामिया खान रुड़की उत्तराखंड से, गिरीश पलड़िया हल्द्वानी उत्तराखंड से ही, और अनुराधा गुप्ता जयपुर से। इन्होंने भेजा बिल्कुल सही सही सही नाम। नाउ बैक टू द सोहरा यानी चेरापूंजी, जो भारत के मेघालय राज्य में मौजूद है और राजधानी शिलांग से 35 मील यानी लगभग 55 किलोमीटर के आसपास है। ऑफिशियली इसे इसके पुराने नाम सोहरा से भी जाना जाता है। और कहा यह भी जाता है कि चेरा पूंजी इस नाम का मतलब होता है संतरे की भूमि यानी लैंड ऑफ ऑरेंजेस। एक्चुअली लोकल स्टोरीज की माने तो सोहरा इस शब्द का खासी भाषा में अर्थ संतरे की भूमि ही होता है। और खासियत यह भी है कि यहां संतरों की एक खास किस्म मैंडरिन की बड़े पैमाने पर खेती होती है, जो अपने स्वाद

और क्वालिटी के लिए वर्ल्ड फेमस हैं। माना ये भी जाता है कि नागपुर के मशहूर संतरे भी बेसिकली चेरा पूंजी के संतरों के ही सक्सेसर यानी वंशज हैं। और एक खासियत बताऊं, चेरा पूंजी मशहूर है अपने खास ऑरेंज हनी के लिए भी, जो असल में संतरों के बागों से ही इकट्ठा किया जाता है, जिसका टेस्ट कुछ अलग ही होता है। और बात तो कुछ अलग इस अगले ट्रैक में भी है, क्योंकि इसे चाहे जितनी बार भी सुन लीजिए, हर बार नया सा ही लगता है।

पहुंचना कैसे है चेरापूंजी, चलिए अब इस पर भी बात हो जाए। तो देखिए, चेरापूंजी का अपना कोई बड़ा रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट तो है नहीं, तो यहाँ पहुंचने के लिए बाय रोड ही आपको आना पड़ेगा। और बाय गॉड, जो रास्ते हैं ना यहाँ के, बस कमाल ही है। बाकी शिलोंग और गुवाहाटी के लिए आप फ्लाइट बुक कर सकते हैं, जहाँ से आराम से बाय रोड चेरापूंजी पहुंचा जा सकता है। ट्रेन से आएंगे तो भी उतरेंगे गुवाहाटी रेलवे स्टेशन ही, जिसके बाहर पल्टन बाजार से आपको बड़े आराम से चेरापूंजी के लिए बसें या फिर टैक्सीज मिल जाएंगी। बस फिर 4 से 5 घंटों के अंदर आप पहुंच जाएंगे चेरापूंजी, और फिर जमकर कीजिए मस्ती।

चेरापूंजी के अंदर ट्रैवल करने के लिए प्राइवेट टैक्सीज, शेयरिंग टैक्सीज सब मौजूद हैं। और अगर आप पहुंचे हैं अपने श्रीमान या श्रीमती जी के साथ, तो सजेशन ये है कि रेंट पर लीजिए स्कूटी या बाइक और भूल जाइए सारी टेंशन। अब देखिए बात सीधी सी है, मंजिल पा लेने में वो मजा कहाँ जो मंजिल तक के सफर में है। तो एंजॉय करते रहिए खूबसूरत चेरापूंजी का ये सफर विद मी वन मोर लवलीएस्ट सॉन्ग। अच्छा, ये जो सॉन्ग है ना, इसमें भी कुछ खास बात है, अगर जानते हैं तो जरा लिख भेजिए, पर जल्दी।

तो अपने टाइम का चार्ट बस्टर सॉन्ग। और खासियत ये कि गीतकार रविंद्र रावल ने बड़ी ही चतुराई के साथ पुराने दौर की फिल्मों के नामों को पिरोते हुए इस गीत के बोल लिखे हैं, और ऊपर से राम लक्ष्मण जी के म्यूजिक ने तो बस कमाल ही कर दिया है ना। नाउ बैक टू द चेरापूंजी, वापस आ जाइए जहाँ की तस्वीर आप मेरे यानी नाज के साथ देख और सुन रहे हैं। चेरापूंजी की ये तस्वीर यहाँ के जीवित जड़ पुलों यानी लिविंग रूट ब्रिजेस के जिक्र के बिना अधूरी है जनाब। लोकलाइट यानी खासी जनजाति के प्राचीन इंजीनियरिंग और सब्र का बेस्ट एग्जाम्पल है ये। असल में ये जो पुल है ये लोहे या सीमेंट से नहीं बल्कि फीकस इलास्टिका, जिसे भारतीय रबर ट्री भी कहा जाता है, उसकी जिंदा जड़ों से बनाए जाते हैं। चेरापूंजी की खासी जनजाति इन पेड़ों की एरियर रूट्स यानी हवा में झूल रही जड़ों को बांस या सुपारी के खोखले तनों के जरिए बांध देते हैं और नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे को जोड़ देते हैं।

कमाल की बात यह है कि इन पुलों की उम्र 500 साल तक की भी हो सकती है, तो अंदाजा लगाइए जरा इनकी मजबूती का। हालांकि इस तरह का एक पुल बनने में एवरेज 10 से 15 साल का समय लग जाता है, पर यकीनन ये किसी अजूबे से कम नहीं है। ठीक, जैसे ये अगला सॉन्ग। अच्छा, फिल्म का नाम भी अजूबा ही है। माफ कीजिए, फिल्म का नाम अजूबा नहीं है, फिल्म का नाम तो जीन्स है, गाना, गाने के बोल जो हैं वो हैं अजूबा। फील कीजिए इस अजूबे को और जल्दी से वापस आ जाइए।

मैं डॉक्टर ऋचा सूद सीबीएसई नेशनल अवार्डी प्रिंसिपल और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एथलीट हूँ। 15 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं जिसमें कि 4 स्वर्ण पदक भी हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरा होना एक बहुत बड़े गौरव की बात है और हम सभी श्रोताओं के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि आकाशवाणी ने मुझे लगता है कि हर किसी के जीवन के हर छोटे बड़े अवसर पर, हर छोटे बड़े पड़ाव पर साथ दिया है और हमें संगीत से जोड़कर जिंदा रखा है। अगर जिंदगी में संगीत की मिठास है तो वो आकाशवाणी की वजह से है, वरना शायद हम सब संगीत को जानते ही ना होते। आकाशवाणी ने हर उस मौके पर, हर उस अवसर पर, हर उस उत्सव पर हमें जिंदा रखा है एक लाइफ लाइन के जैसे, कि जैसे मान लीजिए रक्षाबंधन है, दिवाली है, या भाई दूज है, या नया वर्ष है, या किसी का जन्मदिन है। कोई भी ऐसा उत्सव जिसमें आकाशवाणी ने हमारा साथ ना दिया हो ऐसा नहीं है। चाहे रोमांस हो या ब्रेकअप हो, पढ़ाई हो या अकेलापन हो, पहाड़ों पर हो, मैदानों पर हो, या घर में हो, और आजकल तो कार में भी आकाशवाणी हमारे साथ ही चलता है। मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन ने जो 70-80 के दशक के लोग हैं, उन्होंने तो संगीत आकाशवाणी से ही सुना है और आज भी हमारा पुराना नाता है। मुझे लगता है कि ये बताना बहुत जरूरी है कि हम भाई बहनों में आकाशवाणी पर गीत सुनने के लिए ट्रांजिस्टर को लेने में, चलाने में और छिपाने में अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। तो एक बचपन में जो खेल जैसा एक नाता है वो भी है हमारा आकाशवाणी से।

0: तस्वीर चल रहा है प्रोग्राम जहां मैं यानी नाज आपको लेकर आ पहुंची हूं चेरा पूंजी, जिसके बारे में एक बात तो बच्चा बच्चा जानता है। अरे भाई, सामान्य ज्ञान के शुरुआती ज्ञान में ही हम ये रट चुके होते हैं कि भारत में सर्वाधिक
1: मीडियम वेव 213.67 मीटर को 1404 किलोहर्ट्जमा यो आकाशवाणी को गान्तोक केन्द्र हो। साथ यस समय श्रोताहरूले हामीलाई एफएम कञ्चनजंघा 103 मेगाहर्ज अनि न्यूज अन एआईआर मोबाइल एप मार्फत पनि सुनिरहनु भएको छ। श्रोता, हामी लिएर उपस्थित भएका छौं कार्यक्रम नारी संसार। ताउनो श्रोता, प्रस्तुत छ कार्यक्रम नारी संसार।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जल संरक्षण के सारे काम सुख समृद्धि के रचे आयाम।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गर्मी के इस मौसम में आपके विचार की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ जाती है। जी हाँ श्रोताओ, जल अमूल्य है, इसे बूंद बूंद बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, अनीता जाटव और राधिका रानी जयपुरिया जी ने लिखा है, मिठाइयों का सम्मेलन कहानी बहुत पसंद आई, आपको बधाई।
0: आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
2: ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: तो श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के कुछ उपायों पर
0: जी,
2: और ये भी जाना था कि 12 बजे से 4 बजे तक खास तौर से हमें गर्मी के मौसम में बाहर क्यों नहीं

0: निकलना चाहिए। तो अजीत जी, जरा श्रोताओं को ये भी जानकारी दे दें कि आज की चर्चा किस विषय पर होगी।
1: विमलेश जी, आज हम ये चर्चा करेंगे कि गर्मी के मौसम में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए।
0: जी,
1: लेकिन श्रोताओं, इससे पहले कि हमारी चर्चा आगे बढ़े, एक रोचक लेकिन महत्वपूर्ण बात आपको हम बताना चाहते हैं, और वो ये कि परंपरागत धारणाओं के अनुसार गर्मी के मौसम में सबसे कठिन दिन कब आते हैं।
0: जी अजीत जी, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वो समय अब आने ही वाला है। आज 13 मई हो गई, बस कुछ दिन और। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं नवतपा की। उत्तर और मध्य भारत में इसका प्रभाव विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। इन दिनों हमें अपना बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए। अजीत जी, नवतपा किसे कहते हैं ये तो बताइए जरा।
1: जी विमलेश जी, नवतपा का अर्थ है 9 दिनों तक तपना, यानी 9 दिनों तक भयंकर ताप।
0: जी,
1: ये वो अवधि है जब हमारे परंपरागत खगोल ज्ञान और मान्यता के अनुसार सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, और इन दिनों में लगभग 9 दिनों तक प्रचंड गर्मी पड़ती है।
0: तो श्रोताओं, आइए अब जानते हैं कि सामान्यतः ये समय कब आता है। आमतौर पर मई महीने के अंत यानी लगभग 25 मई से जून महीने की शुरुआती यानी 2 जून तक। जलवायु परिवर्तन के कारण ये समय थोड़ा इधर उधर हो सकता है। इस समय विशेषकर उत्तर भारत में लू चलती है और आसमान साफ होता है, इसलिए छाया की भी गुंजाइश नहीं होती है।
1: जी, बता दें श्रोताओं कि यह प्राचीन अनुभवों के आधार पर परंपरागत मान्यता है। वैसे नवतपे में गर्मी बड़ी खतरनाक हो जाती है, लेकिन इसे वरदान भी माना गया है। क्यों?
0: नवतपे में जितनी गर्मी पड़ेगी, माना जाता है कि मानसून उतना ही अच्छा आएगा।
1: जी,
0: आइए अब करते हैं चर्चा गर्मी के मौसम में खान पान की।
1: तो विमलेश जी, आपसे ही शुरुआत करें।
0: जी अजीत जी, श्रोताओं, गर्मी के मौसम में खास ध्यान ये रखना चाहिए कि हमारा आहार पौष्टिक लेकिन हल्का हो।
1: और हाँ, इस मौसम में नींबू पानी, छाछ, दही जैसे प्राकृतिक उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें।
0: सबसे जरूरी बात तो ये है श्रोताओं कि खाली पेट घर से न निकलें।
1: जी,
0: अब बात करते हैं मौसमी फलों के बारे में। अजीत जी, मुझे लगता है कि प्रकृति को सचमुच हमारी बहुत चिंता रहती है।
1: जी बिल्कुल, इसलिए तो प्रकृति को माँ भी कहा गया है।
0: जी सही कहा, जैसे माता को हमारी चिंता रहती है, वैसे ही प्रकृति भी हमारी चिंता करती है। श्रोताओं जरा सोचिए ना, गर्मी के मौसम में ही खरबूजे, तरबूज जैसे फल प्रकृति क्यों उगाती है, खीरे और ककड़ियाँ क्यों उगाती है, आम और दूसरे मौसमी फल क्यों होते हैं, ये फल सर्दियों में क्यों नहीं उगते।
1: विमलेश जी, आमतौर पर लोग कहेंगे कि इसमें भला सोचने की क्या बात है, ये गर्मी के फल हैं तो गर्मी में तो होंगे ही।
0: जी अजीत जी, आम लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ फल जैसे खरबूज, तरबूज, ककड़ी और खीरे में 80-90% तक पानी होता है।
1: जी,
0: इन्हें खाने से हमारे शरीर में पानी की मात्रा बनी रहती है। इतनी अधिक पानी की मात्रा होने के कारण ये पचने में भी आसान होते हैं।
1: जी विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा, प्रकृति को सचमुच हमारी चिंता रहती है, तभी तो वो ऐसे फल उगाती है जिनसे कि हम स्वस्थ रहें। हमें प्रकृति माता को जरूर धन्यवाद देना चाहिए।
0: जी,
1: लेकिन दुखद है कि प्रकृति हमारे स्वास्थ्य की जितनी चिंता करती है ना, उतनी प्रकृति के स्वास्थ्य की चिंता हम नहीं करते।
0: तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी ये जानकारी, जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न।
1: तो आज का प्रश्न है, प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IBRS नंबर है, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है गर्मी।
0: ये कार्यक्रम गर्मी के मौसम की जानकारी देते हुए बताता है कि गर्मी के मौसम में हमें अपना ध्यान किस तरह से रखना चाहिए, और गर्मी के मौसम में पैदा होने वाली साग सब्जियाँ और फल कौन कौन से होते हैं जिनका हमें भरपूर सेवन करना चाहिए।
2: बहुत पुरानी बात है, दो बहनें थीं, सोना और रूपा। दोनों अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थीं। गर्मी का मौसम था, दोनों बाग में खेल रही थीं।
3: अक्कर बक्कर गंभीर वो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा।
4: अब तेरी बारी है,
5: तेरी तुम्हारी बारी, तुम सुना, तुम सुना।
4: अच्छा ठीक है, मुझे तो कहानी आती है,
5: तो कहानी सुना दो भाई।
4: अच्छा ठीक है। गर्मी का दिन था, एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था, कौआ लाया कंकर, खड़ी में डाले कंकर, पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी।
5: अच्छी कहानी थी। भाई कौवे ने तो पानी पी लिया, पर अब मुझे बहुत प्यास लग रही है।
4: हाँ प्यास तो मुझे भी लग रही है। वो सामने घड़ा रखा है, चलो वहाँ चलकर देखते हैं।
5: हाँ चलो चलो, वहाँ पे
4: चलो
5: पानी
4: चलो
5: होगा।
4: चलते हैं।
2: सोना और रूपा ने घड़े का ढक्कन हटाकर देखा तो उसमें पानी था। दोनों बहुत खुश हुई। रूपा पीने के लिए पानी निकाल ही रही थी कि तभी एक आवाज आई।
6: कौन है?
5: दीदी।
6: कौन है?
5: दीदी।
4: अम्मा जी मैं हूँ सोना और ये है मेरी बहन रूपा।
5: अम्मा जी हमें बहुत प्यास लगी है,
4: हम थोड़ा पानी पी लें?
7: हाँ हाँ क्यों नहीं, पी लो पानी। बच्चों पानी पी लो, ढक्कन ठीक से लगा देना। पी लिया पानी? प्यास बुझी?
5: हाँ पर ठंडा पानी था।
4: लेकिन अम्मा आप कौन है?
7: मैं एक मौसम हूँ। मेरे आने से तुम्हें बहुत प्यास लगती है और बहुत गर्मी भी लगती है, पर मैं अपने साथ तरह तरह के फल भी लाती हूँ, जैसे खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी और भी बहुत सारी चीजें। अच्छा भला बताओ तो मैं कौन हूँ?
5: कौन है आप?
7: नहीं समझे?
5: नहीं।
7: अच्छा तो फिर ये पहेली सुनो।

0: जलते हैं
1: और सारा दिन पानी भी पीते हैं।
0: ऐसा मौसम।
1: अब
2: गर्मी अम्मा है।
3: अब बिल्कुल ठीक समझी। मैं गर्मी यानी गर्मी का मौसम ही तो हूँ।
1: गर्मी अम्मा, आप कब आती हैं पता ही नहीं चलता।
3: सीधी सी बात है, सर्दी जब जाने की तैयारी करती है गर्म कपड़ों में तुम्हें गर्मी लगती है, तो बस समझ लो कि मेरा मौसम शुरू यानी यानी
1: हाँ, जब होली आती है तो गर्मी भी तो लगनी शुरू हो जाती है।
3: हाँ
1: अम्मा, मुझे तो धूप में बहुत गर्मी लग रही है।
3: भाई मेरे मौसम में गर्मी तो लगती है। चलो ऐसा करते हैं, उस पेड़ की छाया में बैठते हैं, ठीक है?
1: हाँ चलो अम्मा, चलते हैं।
4: चलो।
5: सोना और रूपा गर्मी अम्मा के साथ जाकर पेड़ की छाया में बैठ गई। इतने में पेड़ से दो आम गिरे।
1: अरे ये क्या गिरा?
3: मैं देखती हूँ, तुम लोग यहीं बैठो।
5: वहां दो आम गिरे थे, बच्चे भी दो और आम भी दो, लेकिन अम्मा ने वो आम छिपा लिए।
1: अम्मा आप क्या छुपा रही हैं?
6: अम्मा ये आपके हाथ में क्या है?
3: मेरे ही मौसम का एक फल है।
1: दिखाओ ना।
3: दूंगी तुम्हें, दूंगी, पर पहले तुम्हें इसका नाम बताना पड़ेगा।
1: इसका नाम
3: सोचो। मेरे मौसम का सबसे स्वादिष्ट फल।

0: जो बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद है। खट्टा मीठा रसदार फल। सोचो,
1: स्वाद है,
2: पसंद है,
1: सबसे अच्छा भी है।
2: कौन सा फल है?
0: नहीं समझी?
1: नहीं।
0: अच्छा तो फिर सुनो,

0: झट से तुम बोलो ये क्या है, बोलो ना।
1: आ,
2: आ, आ, तुम तो बड़ी समझदार हो।
3: आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम कुल्फी वाला, बर्फ का गोला ले लो, चुस्की ले लो, आइसक्रीम।
2: हाँ बच्चों, मेरे मौसम में तुम लोग खूब आइसक्रीम खाते हो, बर्फ के गोले खाते हो, है ना, कुल्फी भी खाते हो ना। अरे तुम्हारा बस चले तो तुम दिन भर आइसक्रीम ही खाते रहो, है ना।
1: अरे कोई खाने को दे तब ना।
2: अरे लगता है बहुत तेज आंधी आने वाली है, तुम लोग जल्दी से घर चले जाओ। और हाँ, ये आम तो लेती जाओ।
1: लाओ अम्मा, लो। गर्मी अम्मा, हाँ? आप बहुत अच्छी हैं।
2: तुम्हें मीठे मीठे आम जो खिलाती हूँ।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम गर्मी, और श्रोताओं आइए अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। और हमारा अगला कार्यक्रम है कारगिल की शौर्य गाथा।
5: ये कार्यक्रम कारगिल युद्ध से ठीक पहले की परिस्थितियों की जानकारी देता है और वर्णन करता है कि कारगिल युद्ध के दौरान विपरीत और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के होते हुए भी किस प्रकार से भारतीय सेना ने अपार धैर्य और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए विजय की पताका फहराई।
6: मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। सुप्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां कितनी जीवंतता से उन पराक्रमी युद्ध सैन्य महानायकों के प्रति असीम श्रद्धा की भावनाओं को जगाती है।
7: विजयश्री उन्हीं के लिए निर्धारित होती है जो कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के साथ अविचलित और अडिग खड़े रहते हैं। आज का कार्यक्रम हम श्रद्धा सहित समर्पित करते हैं उन पराक्रमी योद्धाओं को जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
6: जी हाँ, आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध की, जो नियंत्रण रेखा के पास जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये ऐसी पहली लड़ाई थी जिसे संचार माध्यमों के द्वारा निरंतर प्रसारित किया गया, और परिणाम स्वरूप इस युद्ध का आंखों देखा हाल भारत की जनता के घर घर तक पहुंचाया गया।
8: What you heard right behind you was the sound of Bofors gun directly targeting the top of Tiger Hill, the prelude to the final assault.
9: We just had a shell land very close to us. I doubt if you were able to see anything.
7: देश के विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से पत्रकारों ने इस युद्ध का जीवंत रिपोर्ट आज प्रस्तुत किया, जिसके कारण जनता द्वारा सेना को अपार समर्थन मिला और फलस्वरूप भारतीय सेना का

मनोबल और अधिक बढ़ा, जिसने इतिहास रच दिया। एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय जिसे आने वाली पीढ़ियां गर्व के साथ याद करेंगी। कारगिल का युद्ध 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक लड़ा गया।

0: इस युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से स्थल और वायु सेना द्वारा लड़ा गया। उल्लेखनीय है कि इस दौरान भारत की समुद्री सीमाओं पर भी भारतीय नौसेना ने शत्रुओं पर कड़ी निगरानी रखी।
1: दिन था 6 मई 1999 का। समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर दुर्गम बर्फीले पर्वतों के बीच एक भारतीय चौकी पर सैनिक मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे।
2: बहुत ठंडी आज तो नहीं। वैसे भी ये एक ऐसी जगह है जहां लगता है कि हम दुनिया के किसी और ही कोने में हैं, है ना?
3: ठीक कहते हो तुम। अभी मई महीने में इतनी ठंड है तो पता नहीं सर्दियों में क्या हाल होता होगा।
2: वैसे तुम्हारी पोस्टिंग तो अभी हाल ही में हुई है ना? अरे मैंने तो यहाँ की 2 सर्दियां देख ली हैं।
3: जरा उधर देखो।
2: अब किधर?
3: वहां लगता है कोई इधर ही आ रहा है।
2: हाँ, कोहरा काफी घना है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है।
3: हाँ।
2: लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूँ मैं कि कोई सैनिक नहीं है। उसका पहनावा तो देखो।
3: हाँ, हाँ। पहनावे से तो कोई कबायली लगता है।
2: हाँ।
3: लेकिन इधर क्यों आ रहा है?
2: हाँ।
3: कोई जासूस तो नहीं? वार्निंग दो इसे।
2: हाँ, आने दो, आने दो।
4: ए, कौन हो तुम? रुका, रुका। जाओ वहीं रुक जाओ, रुका।
5: कौन हो तुम?
6: साहब मैं एक चरवाहा हूँ साहब, मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है। अपने बड़े साहब से मुझे मिलवाओ।
5: क्या सूचना?
6: साहब साहब, दुश्मनों के बारे में।
5: अच्छा, यहीं रुको। चलो, कमांडेंट साहब ने बुलाया तुम्हें।
6: नमस्कार सर, मेरा नाम ताशी नामग्याल है।
0: नमस्कार, कहो क्या कहना चाहते हो?
6: सर हम एक चरवाया है।
0: आगे बताओ।
6: सर ये 3 मई की बात है, कुछ दिनों पहले मेरा याक खो गया था। उसे खोजते हुए मैं पहाड़ों पर काफी ऊंचाई में चला गया था। एक ऊंची चट्टान पर खड़े होकर मैंने दूरबीन से नीचे देखा तो एक बड़ा अजीब सा नजारा मुझे दिखाई पड़ा।
0: क्या देखा तुमने?
6: साहब मैंने देखा कि पठानी कपड़ों में बहुत से लोग एक जगह पर जमा हैं।
0: क्या?
6: उनमें बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक भी हैं। वे बंकर खोद रहे थे और उनके पास बहुत सारे हथियार भी थे। हाँ।
0: कितने लोग रहे होंगे?
6: साहब पूरी गिनती तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना पक्का है कि वो बॉर्डर के उस पार से आए हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं।
0: ये तो बड़ी जरूरी बात बताई तुमने। हो सकता है कि हमें तुम्हारी फिर से जरूरत पड़े। तुम्हारा घर कहाँ है?
6: साहब मेरा गांव है घर कौन, ये कारगिल शहर से 60 किलोमीटर दूर बटालिक शहर के पास है।
0: तो साथियों, इस स्थानीय सजग चरवाहे की सूचना से सेना सतर्क हो गई। जब सेना ने इस बात की छानबीन की तो बात सच निकली। उन्हें पता चला कि सीमा पार से बहुत बड़ी घुसपैठ हुई है।
1: सही स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए भारतीय सेना ने मेजर सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक गश्ती दल भेजा, लेकिन वो दल कभी वापस ही नहीं आया। 10 जून को पाकिस्तानी सेना ने उनके बुरी तरह से क्षत विक्षत शव वापस भेजे।
0: अब इस बात में कोई संदेह नहीं था कि पाकिस्तान द्वारा बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई थी। सेना द्वारा गहन जांच में पता चला कि मई 1999 की शुरुआत में ही पाकिस्तानी सेना नियंत्रण

0: नियंत्रण रेखा पार करके मुश्को, द्रास, काक्सर और बटालिक क्षेत्रों में लगभग 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक घुस आई थी और पाकिस्तानी सेना के लगभग 2000 से अधिक पैदल सैनिकों और कमांडो ने यहां अपनी चौकियां बना ली थी।
1: यद्यपि पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा कहा गया कि ये घुसपैठिए कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानी हैं, लेकिन छापेमारी में पकड़े गए लोगों और हल्की गोलाबारी में मारे गए सैनिकों के पास मिले सारे दस्तावेजों ने साबित कर दिया कि ये काम पाकिस्तान के अलावा किसी और का नहीं था।
0: दरअसल पाकिस्तान का उद्देश्य था सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन क्षेत्रों में अपनी सेना भेजकर श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर कब्जा करके लद्दाख को कश्मीर से अलग करना और कारगिल व सियाचिन पर कब्जा करना।
1: ये भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर सीधा प्रहार था और इसलिए भारत को बड़े पैमाने पर कारगिल में एक सैनिक अभियान प्रारंभ करना पड़ा, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस सैन्य अभियान का नाम था ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना समझ चुकी थी कि विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में शत्रुओं से युद्ध करना एक बेहद कठिन और दुष्कर कार्य होगा। भारत सरकार द्वारा नियंत्रण रेखा को पार न करने के निर्णय ने भारतीय सेना के कई सामरिक विकल्पों पर अंकुश लगा दिया।
0: भारतीय सीमा में घुसे हुए पाकिस्तानी पूरी तरह से सुरक्षित और अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। उन्हें पहाड़ों की ऊंचाइयों पर होने का प्राकृतिक लाभ था, जबकि भारतीय सेना घाटी में खुले होने के कारण बेहद असुरक्षित थी। लेकिन युद्ध अवश्यम भावी था और भारतीय सेना ने युद्ध छेड़ दिया।
1: दिन में किए गए हमले खतरनाक हो सकते थे क्योंकि देख लिए जाने का जोखिम था, इसलिए भारतीय सेना द्वारा आक्रमण मुख्य रूप से रात को 0 डिग्री से भी कम तापमान में किए गए। सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र तल से 18,000 फीट की खड़ी चढ़ाई को चढ़ना।
2: साथियों, हमारे सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो है इन पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना।
3: लेकिन सर, एक और बहुत बड़ा खतरा है और वो है दुश्मनों द्वारा देख लिए जाने का।
2: ठीक कहते हो, अगर हम चढ़ने की कोशिश भी करें तो वो बड़ी आसानी से हमें अपने निशाने पर ले सकते हैं।
4: जी सर, इसलिए दिन की रोशनी में आक्रमण करना बिल्कुल संभव नहीं है। हमारे पास मात्र रात को ही आक्रमण करने का विकल्प बचता है।
2: सही बात। सुनो, सब इधर आओ।
5: जी, यस सर।
2: ये मेज के चारों ओर।
5: जी सर।
2: उधर से।
5: हाँ।
2: जी, तुम्हें याद होगा कि अभी 3 दिन पहले हमारी वायुसेना के विमान इस क्षेत्र में आक्रमण करने आए थे।
5: जी सर।
2: वायुसेना ने हमले के दौरान इस क्षेत्र के चित्र भी खींचे हैं और उन्हें हमारे पास भेजा है।
5: जी सर।
2: इन चित्रों के आधार पर मैंने ये नक्शा बनाया है।
5: जी सर।
2: इस नक्शे के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि दुश्मनों की चौकी जहां है उसकी विपरीत दिशा से हमें पर्वत पर चढ़ना होगा, यानी दाहिनी ओर से।
3: जी सर, आप ठीक कहते हैं सर। इस तरफ से सर, यहां से पहाड़ की दाहिनी ढाल भी ज्यादा कठिन है सर। दुश्मन सोच भी नहीं सकता कि हम इस तरफ से चढ़ भी सकते हैं।
2: बिल्कुल ठीक। तो साथियों,
6: यस सर।
2: अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मेरा अंदाजा है कि इस चढ़ाई में हमें कम से कम 5 घंटे तो लगेंगे, तो क्यों ना रात 11 बजे से इस अभियान को शुरू किया जाए।
5: जी जी सर।
2: चढ़ाई करने वाली हल्की रस्सियां तैयार कर ली जाएं। हथियारों में राइफल्स, हल्की मशीन गन और हथगोले होंगे।
5: सर, जी सर।
2: कोई शक?
5: नो सर।
2: बी प्रिपेयर्ड फॉर द मिशन।
6: यस सर।
3: सर, अब हम चोटी के बिल्कुल पास आ गए।
7: धीमे बोलो, धीमे।
3: जी,
7: उन्हें पता ना चल जाए।
3: जी सर।
7: चोटी पर पहुंचते ही हम सभी रेंगते हुए उनके तंबुओं की ओर बढ़ेंगे।
3: जी।
7: और हथियारों के साथ अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे।
3: ठीक सर।
7: और फिर तुम विपरीत दिशा में एक हथगोला फेंकना।
3: जी सर। जी सर।
7: बम के फटने की आवाज सुनकर अपने तंबुओं से कुछ सैनिक बाहर जरूर निकलेंगे और तुम्हें उन पर फौरन फायरिंग करनी होगी।

0: सांस नहीं निकलनी जैसे धीरे बस अब हम चोटी पर आ गए हैं तो अब रेंगना शुरू कर रेंगेंगे
1: जी सर
0: कोई भी उठ कर नहीं चाहता सब रेंगेंगे आवाज नहीं हर कोई अपनी पोजीशन ले ले
1: हाँ सर
0: एवरीबॉडी रेडी
2: यस सर
0: यस सर हथकोला फेंको
3: गुड वो अपने बंकरों से बाहर आ रहे हैं

0: इस मिशन में भारतीय सेना को भारी सफलता मिली। दुश्मन के अधिकांश लोग मारे गए और कारगिल की इस चोटी पर भारतीय सेना ने अपना परचम लहरा दिया। ऑपरेशन विजय में भारतीय वायुसेना की बहुत ही अहम भूमिका रही। इस युद्ध में सामरिक महत्व के मुख्य क्षेत्र थे मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक।
1: भारतीय सेना ने एक अपूर्व गरिमामय इतिहास रच दिया था।
0: 3 मई से 26 जुलाई 1999 के बीच लड़ी गई इस लड़ाई में 25 सैनिक अधिकारियों और 436 जवानों की शहादत हुई। इसके अलावा 54 सैनिक अधिकारी और 629 जवान घायल हुए।
1: इस युद्ध में 2 सैनिक अधिकारियों और 2 जवानों को परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। ये पराक्रमी योद्धा है कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव।
0: देश इन रणवीरों को उनके असीम शौर्य हेतु श्रद्धा से नमन करता है। कारगिल युद्ध की गौरवशाली विजय की स्मृति में 26 जुलाई को अब देश भर में विजय दिवस मनाया जाता है।
2: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: यतिन्जल प्रस्तुत थियो एनसीईआरटी माथि एक प्रायोजित कार्यक्रम। हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। अब श्रोताहरूलाई लिएर जाँदैछौ विविध भारती सेवाहरूतर्फ।

लता मंगेशकर की आवाज में अनुराधा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शैलेंद्र के बोल, रविशंकर का संगीत। तो गीतकार का नाम आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे तो दांत टूटने का सपना बहुत बार आता है। अभी दो दिन पहले भी आया था। नींद खुलने पर सबसे पहले दांतों की तरफ ही ध्यान जाता है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे सपने तो रोज आते हैं, लेकिन सुबह उठने के बाद कुछ याद नहीं रहता। ऐसा लगता है कि सुबह पड़े हुए सपने अक्सर सच होते हैं। हमारी एक और साथी कहती है कि पहले तो मुझे सपने बहुत आते थे और नींद खुलने के बाद फिर से आकर लेटती थी तो फिर वो सपने वापस में कंटिन्यू होते थे। इंस्टॉलमेंट के सपने उन दिनों बड़ा मजा आता था देखने में। भाई इस जगह आपकी और हमारी लिस्ट मिलती है। हम कह सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट में जब सपना देखते हैं ना, कि जब बीच में नींद खुल जाए तो ऐसा लगता है इतना अच्छा सपना चला था, चलो वापस सोकर इसे फिर से देखा जाए और पूरा किया जाए। तो कहीं ना कहीं वहां हमारा दिमाग भी लग जाता है और किसी तरह से बड़ा आनंद तो आता है उस सपने को पूरा करने में। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अपने शहर से दूर जीवन एक नई किताब जैसा होता है, जहां यादों की खुशबू साथ रहती है पर अपनों की कमी अक्सर खलती है। नई जगहें, नए लोग, नई जिम्मेदारियां इंसान को मजबूत तो बनाती हैं, लेकिन अपने शहर की गलियां, दोस्त और अपनापन दिल में हमेशा बसे रहते हैं। हमने ये पूछा था कि किसी दूसरे शहर में जाकर कुछ मुश्किलें आपके सामने आई क्या, कि इस शहर में रहना कितना मुश्किल है। और ऐसा ही गीत हमने आपको पहचानने के लिए कहा था, क्योंकि मुश्किल शब्द हमारी आज की इबारत में है। तो आपने बिल्कुल सही पहचाना, सीआईडी फिल्म का वो गीत ही हम आपको सुनवाने वाले हैं। हमें बताइए किन की आवाजें हैं इस गीत में।

0: मेरी जान।
1: सीआईडी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाजें। आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे एक साथी कहने कि सपना तो हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा के दिनों में आया था, जिसे याद करके आज भी हंसी आती है। पहले दिन सपने में देखा कि परीक्षा भवन में बैठा हूं, पर पेपर बटे नहीं है, और दूसरे दिन सपना आया कि पेपर देकर बाहर निकल रहा हूं। पेपर में सवाल क्या थे वो दिखाई ही नहीं दिए। भाई हम तो ये कहेंगे कि ये सवाल और जो ये बीच का समय होता है ना, वही काटना तो मुश्किल होता है। अब सपने में भी अगर हम ये सब देखेंगे तो भाई वो तो हकीकत में भी नहीं देखना चाहते। ऐसा लगता है बस किसी तरह से अंदर जाएं और परीक्षा भवन में बैठे और बस बाहर आए, बीच का जो समय है किसी तरह से यूं ही कट जाए। और आपने बिल्कुल सही तरह से सपना देखा है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आपने पूछा है तो बता रहा हूं, 1995 में हाई स्कूल पास करके पारिवारिक कारणों से बंबई से दिल्ली आ गया। 4-5 साल तक कुछ भी अच्छा नहीं लगता था यहां, बल्कि 2 बार भागकर वापस बंबई गया। रिश्तेदारों का व्यवहार, वक्त और हालात ने ऐसा सबक सिखाया कि 30 सालों से दिल्ली में हूं लेकिन बंबई की तरफ पैर करके भी नहीं सोता। वहीं हमारे कौर साथी कह रहे कि गंगटोक भ्रमण के दौरान नाथुला जो चीन की सीमा पर है, वहां ऑक्सीजन कम होने के कारण डर लगा था क्योंकि सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। तो इस तरह से जो मुश्किल वक्त के बारे में हमने पूछा वो हमारे साथियों ने बताया। हमारे कौर साथी कहती हैं कि जब मुसीबत में हो तब कैसे निकले, तो मैं थोड़ा चुप रहना चाहती हूं, बहुत कम लोगों से बात करना चाहती हूं और जो मेरे मन को अच्छा लगता है प्रभु का नाम बस उन्हें याद करती हूं। बीच रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी, कोई बात परेशान कर रही थी तो रात में बैठकर मंत्र उच्चारण करती हूं, कोई गिनती नहीं करती हूं। बहुत बार मन को सुकून के साथ साथ उस समस्या का समाधान भी निकल जाता है। वहीं हमारे बहुत से साथी हैं जो ये बता रहे हैं कि उनकी जो लिस्ट है वो हमारी लिस्ट से काफी हद तक मिल गई है। बहुत सारे गीत जो उन्होंने सोचे थे और लिखे थे कमेंट में, वो आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो गए। तो यकीन मानिए हमें तो बहुत ही आनंद आ रहा है कि आपकी और हमारी लिस्ट मिल गई है। तो अब एक ऐसा गीत जिसके जो तो लिस्ट में बहुत देर से हम देख रहे हैं कि बहुत से साथियों की लिस्ट में शामिल है, और ये हमारे गीत हमारी लिस्ट में भी काफी देर से शामिल था। तो चलिए ये गीत सुन लेते हैं और आपको बताना है फिल्म का नाम।

अनुरोध फिल्म का ये गीत आपने सुना। मन्नाडे और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। हमारे बहुत से साथियों ने इस फिल्म का नाम बिल्कुल सही बताया, क्योंकि हमारा यही सवाल था। हमारे एक साथी ने कहा कि आमतौर पर सपनों में वही आता है जो हमारे दिमाग में रहता है, और हम सोचते हैं कुछ ऐसी जगह जहां हम जाना चाहते हैं। कभी कभार ही ऐसा होता है कि जो नहीं सोचा जाता वो सपनों में आ जाए, लेकिन ये कभी कभार ही होता है। और हमारे बहुत से साथी हैं जिन्होंने अपने सपनों के बारे में बताया कि क्या क्या देखते हैं। तो आधे से ज्यादा साथी तो स्कूल के दिनों को ही देखते हैं, खासतौर से परीक्षा का समय, और वो भी ऐसा कि अगर वो परीक्षा दे रहे हैं तो टीचर ने कॉपी छीन ली, या कुछ लिख नहीं पाए, या फिर सब चीजें ठीक नहीं हुई। भाई ये जो एक भय है मन में, वो सालों साल बसा हुआ है ऐसा लगता है, क्योंकि वो जो भी हमारे साथी लिख रहे हैं कि जो देखते हैं ये वाला सपना, वो कब से अपने स्कूली जीवन को पार कर चुके हैं और वो पढ़ चुके हैं, पढ़ाई वढ़ाई सब हो चुकी है, कई तो रिटायर भी हो गए अपना काम करके, लेकिन ये जो सपने का जो है ना कि भाई नहीं परीक्षा दे रहे थे परीक्षा नहीं हुई, वो अब भी जारी है। हमारे बहुत से साथी बहुत खुश हैं और हम भी उनसे ज्यादा खुश हैं कि उनके गाने आज के लिस्ट में शामिल हो गए। तो एक और गाना चलिए जांच लेते हैं, क्या आपके लिस्ट में ये गाना था। फिल्म का नाम अगर बताएं तो बहुत अच्छा होगा।

सम्राट चंद्रगुप्त फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। जब बात हो रही है जिंदगी की मुश्किलों की और सपनों की, तो एक गीत हमें बिल्कुल अच्छा लगता है, क्योंकि वो गीत हमें किसी तरह से ये समझाता है कि जीवन को जीना ही है और जीवन को किस तरह से जीना चाहिए। ये गीत आपको सुनवा रहे हैं और आप हमें ये बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है, आवाज किसकी है।

मेरा नाम जोकर फिल्म का ये गीत मुकेश की आवाज में आपने सुना। यही हमारे सवाल का सही जवाब था और इसके साथ ही आज का सुरीला सफर कार्यक्रम यही समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विश्वास मत हासिल कर लिया है। एडप्पाडी पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। एक रिपोर्ट।
1: लोक निवास में आयोजित एक सादे समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने मुख्यमंत्री और आज शपथ लेने वाले दो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव शरद चौहान ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को पढ़कर सुनाया जिसमें मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। समारोह के बाद श्री रंगासामी पुदुचेरी विधानसभा भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय गए और अपना कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुदुचेरी को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में काम करेगी। रंगासामी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार प्रदेश में एनडीए की सरकार।

0: बनी है। अन्य मंत्रियों, विभागों और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सरकारी सचेतक की नियुक्ति को लेकर एनडीए में विचार विमर्श जारी है। बिपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली, जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के पांच अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं नौदा सीट से विजयी आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने भी शपथ ली। कबीर ने रेजीनगर सीट से भी जीत हासिल की है। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस राय ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। राज्य में फालता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को पुनर्मतदान होना है। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। एक रिपोर्ट।
2: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री यादव मंत्रिपरिषद के सदस्यों से राष्ट्रीय हित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कारपूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की बचत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जनता से वाहनों का अनावश्यक उपयोग न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है और मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को वाहनों के उपयोग में संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट, डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष सीबीएसई की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकीय विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। सीबीएसई ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
4: श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली दो दिवसीय बैठक

0: में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लेख को साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशन और बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह परिवर्तन क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक अवसर लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि यह लेख दर्शाता है कि पंजाब में किस प्रकार बदलाव आ रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देशभर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर भी निर्णायक समाधान प्रदान करना है, जिसमें पेंशन भोगियों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े, उनका समय और धन दोनों की बचत हो और उन्हें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्राप्त हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रभदीत वांछित था। इस मामले में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए और कई सह आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्नपत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम ने केवल नीति निर्माण के बजाय अंतर्राज्यीय समन्वय, सुगम सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन जैसे प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। वे प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रूपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,821 रूपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की वृद्धि देखने को मिली। सेंसेक्स 403 अंक बढ़कर 74,962 जबकि निफ्टी 146 अंक की वृद्धि के साथ 23,526 पर था। भारत में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ जाएगा। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून आमतौर पर हर साल पहली जून के आसपास केरल में शुरू होता है। विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी आज बिजली

0: चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री फखरुद्दीन अली अहमद देश के पांचवें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पदभार संभाला। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उधर बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग स्यू टोंग को सीधे सेट में 21-9 21-12 से सिर्फ 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क के अमाली शुल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदाम्बी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो केन यू को आसानी से 21-14 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीनी ताइपे की सू ली योंग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराओका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की सेंगमिन ली को 5-0 से हराकर लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। अन्य चार मुक्केबाजों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किये। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने या चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 213.67 मीटर को 1404 किलोहर्ट्जमा यो आकाशवाणी को गान्तोक केन्द्र हो। साथै यस समय श्रोताले हामीलाई एफएम कञ्चनजंघा 103 मेगाहर्ज अनि न्यूज अन एआईआर मोबाइल एप मार्फत पनि सुनिरहनु भएको छ। श्रोता हामी उपस्थित भएका छौं विभिन्न सिक्किमे भोटिया लोकगीतहरू साथ। ताउनुहोस् सर्वप्रथम सुन्नुहोस् कलाकार राबदेन लामा अनि साथीको स्वरमा यस सिक्किमे भोटिया लोकगीतलाई।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत हासिल कर विश्वास मत जीत लिया है। एडापड़ी पलानीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। भाजपा विधायक और पीएमके समेत 5 विधायक तटस्थ रहे। डीएमके और अन्य गठबंधन सहयोगी दलों ने प्रस्ताव में भाग नहीं लिया और विधानसभा से वॉकआउट किया। एसपी वेलुमणि के नेतृत्व वाली एआईएडीएमके ने सरकार का समर्थन किया। मुख्यमंत्री ने बहुमत साबित करने का प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया था। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित समारोह में पुदुचेरी के राज्यपाल के कैलाश नाथन ने टी श्रीरंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के ए नमस्सीवीएम ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम, अधिकारी और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली, जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी गुजरात और असम की उनकी हालिया यात्राओं के दौरान लागू की गई थी। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री के 7 अपीलों के अनुरूप है। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद के उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किए जाएं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थीं। सीबीएसई के अनुसार 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी

आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर दोपहर के 3:11 हुए हैं आपके साथ कार्यक्रम मनभावन लेकर मैं हूं नईम अख्तर। जी हाँ, कार्यक्रम मनभावन, वो कार्यक्रम जिसमें आपके मन को भाने वाले गीत हम आप ही की फरमाइश पर आप ही तक वापस पहुंचाते हैं। मैं हूं नईम अख्तर और आपके लिए हम वो नंबर ऑन एयर कर देते हैं जिस नंबर पर आप अपनी पसंद हम तक पहुंचाएंगे। जी, फोन नंबर नहीं व्हाट्सएप नंबर आप हमारा लिख लीजिए 9868687539868687535। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कीजिए अपने पसंद का गीत और हम तक पहुंचाइए और हम आप तक पहुंचाएंगे। जैसे कि कार्यक्रम शुरू होते ही हमारे पास ये जो पहला मैसेज आया है वो है सनावत से शेख मूसा मोहसिन का, उनकी पसंद का गीत फिल्म कांच और हीरा से ये रहा।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह है कार्यक्रम मन भावन। आप सुन रहे हैं मन भावन में अपनी पसंद के गीत और आपकी पसंद के गीत हम तक पहुंच रहे हैं उस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जो आप हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं। जी हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868686753 यानी 9868886753 और इस नंबर पर हमारे पास दो मैसेजेस और हैं जो अभी हम शामिल कर रहे हैं। मतलब मैसेजेस तो बहुत सारे हैं लेकिन जो दो मैसेजेस अभी हम शामिल कर रहे हैं उनमें से एक मैसेज है स्वरूप आनंद सरजाल का जोड़ा पीपल अंबिकापुर से और इन्होंने दादा फिल्म का एक गीत सुनना चाहा है। अभी सुनवाते हैं दोस्त आपके पसंद का गीत हम आपको। और एक और मैसेज हमारे पास आया है, इन्होंने लिख के भेजा है मुबारक नाम हमारा है। नहीं, अच्छी बात है कि आपका नाम मुबारक है, आपको बहुत मुबारक हो, लेकिन ये भी तो बता देते मुबारक कि आप रहते कहाँ हैं। अपनी जगह का नाम भी लिख के भेजिए ना, जरा अच्छा सा लगेगा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आपने अगर नहीं लिख के भेजा कि कहाँ से आपने ये मैसेज भेजा है तो भी आपकी पसंद हम तक पहुंच गई है। आपने जो गीत सुनवाने की फरमाइश भेजी है नाम फिल्म का गीत, ये गीत हम सुनवाएंगे आपको दादा फिल्म के इस गीत के तुरंत बाद।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भावन और मन भावन में आपकी पसंद के गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं आपकी व्हाट्सएप पर भेजी हुई फरमाइश के माध्यम से। व्हाट्सएप पर अपनी फरमाइश भेजने के लिए हम आपको अपना फोन नंबर बता देते हैं। फोन नंबर है हमारा 9868868753 9868868753। जी हाँ, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है आपको जो हमने बताया। और हमारे पास अगली दो फरमाइशें जो आई हैं उनमें से एक फरमाइश भेजी है शेरवानी स्कूलगंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर लुबना अंसारी और आलिया अंसारी ने। इन्होंने दोस्ती फिल्म का 1964 की फिल्म दोस्ती का एक बहुत ही खूबसूरत और मधुर नगमा सुनना चाहा है, हम आप तक पहुंचा रहे हैं दोस्त। और दूसरा गीत जो सुनना चाहा है वो है उत्तम नगर होली चौक से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, इन्होंने हिमालय की गोद में फिल्म का जो गीत सुनना चाहा है वो हम आपको सुनवाएंगे दोस्ती फिल्म के गीत के तुरंत बाद।
1: दुख हो या सुख जब सदा संग रहे ना को फिर दुख।

0: हेतु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉकर टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर 3:33 कार्यक्रम मन भावन में आपके साथ मैं हूं नईम अख्तर और हमारे साथ हैं आपकी पसंद के व्हाट्सएप के हुए कुछ फरमाइशी नगमे जिन्हें हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए हम आप तक भी एक चीज पहुंचा देते हैं, आपकी पसंद के गीत आप हम तक पहुंचा रहे हैं और आप तक हम उस नंबर को पहुंचा देते हैं, व्हाट्सएप नंबर को, जिस नंबर पर आप अपनी पसंद के गीत हमको लिखकर भेज सकते हैं। जी हां, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868886853 यानी 9868886853। और आपकी पसंद जो हम तक पहुंची है उनमें से एक ही गीत को इत्तेफाक से हमारे दो श्रोताओं ने पसंद किया है। एक हमारे श्रोता हैं अंकित कांगड़ा, तन्वी बोट, निखिल कांगड़ा, बबीता बोट, सीताराम कांगड़ा, इन सभी ने एकता कॉलोनी रोहतक से हमारे पास एक पसंद भेजी है। और इसी गीत की फरमाइश हमारे पास आई है भगत सिंह जी की। इन्होंने ये नहीं बताया कहां से भेज रहे हैं ये, लेकिन इनका मैसेज हम तक पहुंचा है। तो चलिए, आप दोनों की ही पसंद की गीत को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिल्म पतंग से ये गीत है। और एक और श्रोता हमारे पास अपनी फरमाइश भेज चुके हैं, राजकुमार द्वारका मटियाला से। इन्होंने हमें फिल्म मासूम फिल्म का भूपेंद्र की आवाज में, जिसमें सुरेश वाडकर ने भी उनका साथ निभाया है, एक गीत सुनने की फरमाइश भेजी है। तो चलिए पहले पतंग फिल्म का गीत सुनते हैं, रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, और उसके फौरन बाद हुजूर इस कदर भी।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर 3:49:49 कार्यक्रम मन भावन में हम आखिरी बार नंबर बोल रहे हैं उस व्हाट्सएप का जो जिस पर आप हमें भेजेंगे अपनी पसंद के गीत। जी हाँ, हमने आपको ये कहा है कि मन भावन कार्यक्रम में आप अपनी पसंद के गीत हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मतलब उनके बोल लिख के हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपकी पसंद आप तक पहुंचाएं। तो जनाब नंबर नोट कर दीजिए, 9868

0: 9837536883687853। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भेजिए, शायद आखिरी गीत होंगे जो हम तक पहुंचेंगे, उसके बाद कार्यक्रम का वक्त खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास जो दो गीत और आए हुए हैं वो हमें तीन हमारे श्रोताओं ने लिखकर भेजे हैं। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार सर्वत देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख, इन सभी ने जो, और समस्त वायाल परिवार, अच्छा मतलब इसके बाद ही अभी कुछ और सदस्य बचे हुए होंगे, तो इसके बाद इन्होंने लिखा है समस्त राजे जाधव और देशमुख और वायाल परिवार। चलिए आप सभी के पसंद का एक गीत जो आपने लिख के भेजा है अभी सुनवाते हैं। बस इतना जरूर कहेंगे कि जो गीत आपने लिख के भेजा है बहुत ही मनचला सा, बहुत ही चटपटा सा, बहुत ही चुलबुला सा गीत है, अच्छा लगता है सुनने में, तो एक बार हम भी आपके साथ सुनेंगे और हम भी इसको एंजॉय करेंगे। और एक और गीत हमारे पास लिखकर के भेजा है हमारे दो श्रोताओं ने, लच्छनपुर जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू और कुंती साहू ने, और इसी गीत को संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगा वाला चौक, गोराया जालंधर से भी सुनना चाहते हैं। फिल्म जो हमारे पास गीत है वो है सिलसिला फिल्म का गीत, पहली बार देखा ऐसा जलवा। तो दोनों ही गीत बड़े चुलबुले से गीत है, छेड़छाड़ से भरे हुए, पर बहुत ही डिसेंट अंदाज में इन गीतों को हम तक पहुंचाया गया है। तो चलिए एक एक करके दोनों गीत सुनते हैं।
1: लूटा है मना लेंगे, वो तो बिगला है बना लेंगे।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। ये दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल

डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर सुनते हैं डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर, आरव और अर्पिता की पसंद का ये गीत कार्यक्रम मन भावन में।

नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी गान्तोक का विशेष कार्यक्रम शौर्य गाथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये कार्यक्रम उन वीर जवानों को समर्पित है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। उनका साहस, समर्पण और देशभक्ति हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। तो श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं पहली गीत।

संगीत हमारी जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा है। कभी ये हमें खुशी देता है तो कभी पुरानी यादों से जोड़ देता है। तो आइए आज के इस सुहाने पल को और भी खास बनाते हैं एक मधुर गीत के साथ।

आप अभी अभी हमसे जुड़े हैं तो आप सुन रहे कार्यक्रम शौर्य गाथा पर प्यारा प्यारा सा हिंदी गाने। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं फिर से ये अगले गाना।

हम कार्यक्रम के अंत में आ चुके हैं, तो इसी श्रृंखला में मैं कहना चाहती हूँ, भागदौड़ वाले जिंदगी में अपने लिए भी जीना सीखिए और खुश रहना, क्योंकि क्या पता कल क्या होगा। तो इसी मौके पर सुनते हैं एक और सुंदर सी गाना।

इसी गाने के साथ छोड़ेगा था कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए गीत और नई बातों के साथ। मुझे दीजिए अभी के लिए इजाजत। नमस्कार।

छौ गि आप लंग नौ हों सल्यांग का अभी शु दो साला अरिंग पोंग का अगेन मुन लंग नौंदित फामो अजोंग दो कयु नमशिम न्यूलाकात मुन हों सल्यांग का पारजोंबु सोंसा खोक उन गेन रिशु शु निहाम थुयोंग यो शोंग फोकुदो अकु निमो पारजोंबु सोंसा खोक लिनबु दो हयुम उलबु सोंगलम सरीजोंग दो सा थामलोंग पोंग शु सरीजोंग दो ला अजक आरियुम उन उरेदो सा गोंग तेन तेन नी पुयांग ना मनिन पु यो शोंग सतन का खोक अतिम निमो मुचोका लिंदुगाबु आरिंगरी शुनी गोसिन तिंगसोंग सतचत आरिरे या यो कयु सन्यु थिंग बोजो मुजो साजों तचत मुचोमनी शुमानु गोगों तिंगसोंग सनम सिमन्यु सोंग सथा दोला जिमगानबु मुनशु तुसरी अनंग संग्योनी अहुदुम चोमनु जोशोंग दो डॉकेशु अनु मातबा अग्याप संग्यो मुन्नु बा मुचुकनी लिंदुगाबा तचत अरेरे अगिन सतचत मुनलेल नोन बनिमो मिक्त पेलु मातलु शपलु कातन कत्सा अरियुम अजुक सरीजोंदोला मातलु शपलु लापसी बुतचत लातु बनिमो ग्याप्शु नमसिम न्यूसोंग तचत अरेका छो यंतन दुप्थो बुथुप्शु हयु तो कातला अनांग मुंगुन्ने हयु नो मुसक कसक यो थुबुंगुन्शु मुरो अनांग सोंग्रेम सोलो मातन जोम नो जोशोंग यमलीन सेनला अरेका कयु तदो तदो गिमन बामगात बुंगुन्शु अरी पारजोंबु सोंसा खोक प्लोंका यु कुशोंग तापित मात कच्छु कातन कात्रेम चुम जो सिबु अत्युन पोंका युसा लियांगमु पोंका अग्याब दुमुन वाम अन मात बा अरेजोंबु अप्लोंसा अरेजोंबु अत्युन मुंगुन तका योंगलीन पारबु विगबु सोंसा तेनका कात्रेल जुंगनन ह्युम पोंग यांगने खोक पोंग लियुथुबु नि उरीपोंग नोंका ग्योथो खोक यमतोंग खोक सेमलत खोक थ्योमलत खोक लोडिक खोक यंतन खोक आरेतेत हानफ्रोन का ngगोंग पारनु विसीबु संसा खोकनी तदुम ग्योशं सथारी हुयुनन थामग्लोंग पोंग पारबास श्रीनन्द्रे तदोसा मिचुका उन ग्युकी चोपलोंका अगु बलात खच्यो नितफ्रोंसा खोकनन कयुम थामलोंग शु पारबा अजुक्लत रियुमलत चोंगलत लिमलत उन अफार सिटित जोक उरेपोंग सतन बोशु सेमलत खोकनन पारनन विक सिबु सोंगनन थामलोंग पोंग श्री जुक मजुक ngखुत मलुबोंग पोंसा नंगतार का गुंग दिक मुदिक उरे पोंगला मुनखुत सेतनिमो थ्योमलत खोकसा लेंटोप नन मातबा पारबु सोंसा शिव सम सक्चिंगी हुयु सोंसा मुवत लंका यमगत यम अकोनिमो लॉडिक खोक अरेका चोंबु सोंगी सरीका पारन विक्सिबु सोंसा मलियुका अजुक अदुक मुन खचु अन यंतन खोक अरेका थामलोंग पोंसाय यंतन मुनगत सरीका पारन विक्सिबु सोंसा मिलियु रिमलत सतनका मुनचु जोंथुक नुन खोक पोंसा देप का पारबु विकबु अन उलबु नेतला दोरेम दंडोलत थो सोंसतनका अजुक आर्यम खोकपोंग जुक थुबुनिमो पारबु विकबु सोंगरेम ग्यनु थोशंग तनका खोक आरिपोंगनन कायुम फोकदो ग्यनु थोशंग तनका हेंटप माचियो

तासिंग दीपा कर्मकार लाभ हे हेखे खो लेरिम चु नाखे लेरिम मंडो चु नाखे खा बाग घे लेंदी के रंगी के मिंग लोया ngoye खे ता सेमशु ना खे फुम चु केपु एखे बे दिले हेपे गे खो फुम लालो चुकी के रंगी के मिंग भूमि गे ओछा लाभ खे रंगी के मिंग लो ngon na chu khe semshu inspire chi ya yekhe ta to yagar gelrap ki ki lo yu na rang ki ki ming ya yekhe phumu chu yagar le indra gandhi ingala lenge tham che ki khen ku ngo khen khe ra be lo kep chi ki hema phum go thang po gi yagar ki ki sile लेरिम नादी की यापले इंदिरा गांधी छु लो मुरांग की बॉडी गार्ड की मेंदा क्याप्ती की सेसे पो थातो गेलरप की लग्यू नांग लो ये तो बे दिले हेपो डाउ प्रतिभा पटेल लेंगे थामचे की थुगी लो एखे बे गथांग पो जागर की सीने सीजिन लेंपो प्रतिभा पटेल लाप जागर की लो लग्यू नांगशा एखे बे दिदा डाउ जगर की गोथांगपो भूमि की नांगले के आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी दीदा नांगजेन अरुणिमा सिन्हा हेमा वॉलीबॉल की टीम चिशे नांगशा खो लेंगे केशु दा थमचे ले केशु ची एखे बे ग्याबले माउंट एवरेस्ट खा नांगशा जैक्ती के रंकी की मिंगलो इंस्पायर फ्या ती एक बो बे थातो अरुणिमा सिन्हा लो ngo mashi khe mikaya me khe be dida dau yagar e sachu manipur le ten he khe meri kom yana magnificent meri lapte khon lenge dem jogi chim sishe nangsha tham chele kheta kheshu chi thendi ki olympic ki dendur chugi nimna seda ni gi takma chu kepo thop he khe be थातो जगर की मिंग दा रंकी की मिंग ची मिंग चेन ची या थप ना जाए पोई थातो जगर गे खप इचु थम चे नंग लो मेरी कॉम लो ngo mashi khe mikaya me khe be दिले हेपे की कल्पना चौला जगर ई सचु हरियाणा ले भूमुचुई नंग लेगे गोथांगपो स्पेस यानी नमखा नंगशा सोंदी की रंकी की मिंग लो या मिंग चेन ची थबोबे दिले फ्याजा थातो खोन लेंगे थमचे चुलो गेलरप दा लग्यु चुना दे रंकी की मिंग लो ngote हेपे के ngo mashi khe lo mikaya me pei दिचु थमचे की की लग्यु चु ngacha ki लेंगे चुगी ngensi lo riri phyati shoba chini thichi achi chi rinko chita chi thenshe be odi phyati dordi phyati phima chu senke lenge chu ngacha dera phyati ki ngacha chu i rangki i kana kanji ra i ru dilo ya jindi ta rangki ki ki gen lo lokchen lokchen lo ku chapti ki yarge lap thenshe ki kokap chu na she te leptira ke chi shu chi ekhe pe dera phyati ki phoda phumi chu ki phanang lo kha pa gen len dendur chu na taba chene de जिपचु थम्बा ग्याचा देचो भूमुचु की धनले हेतोबे दिले हेपे की एजुकेशन हेंते चु ना ताबाचे ने दे 41% की थिंकेन चु लखों भूमुचु की धनले हेतोबे गाची ई चीचु नंशल गाचा ताबाचे ने अम लेंगे चु की ग्रुप याना सेल्फ हेल्प ग्रुप लप्ते यामेने SSG lapti ge khong lhenge chu gi group chu ye khe be de chu tham che le rim chu he be gi nang le de le nga cha tham che chu manyam po phya ti gi na na ba che ne nim chi rang gi kho phum lhenge chu gi gi phumi gi o cha ya na kho phum chu gi ne mu ra inspire ya me ne sem shu chi na di gi kho nim chi o dem ten su khe be o di phya ti nga cha tham che chu लेरिम खान्चिन र नारु दिल लक्चे लक्चे गाचा को क्याप्ते गाचा चिन्दि चु फ्याति के लेरिम ल यारगे फ्या थेंशे के खकप नागु पलेप रे राखे छि चु जिए पोनी ता तो सते लंगे

चोके धरिङ सक्सेस स्टोरी अफ वुमेन की लेरिम ले सेमोना छा थार सेमोना के लेंगे चुकी सेलो सुंगलु फिदोई सेमोना।

0: Lenge chu taring ten le nga chi le rim na cho cha ta ton sa te lenge chu ki lung ti kha ga tu pangi mi tu de jo pe le rim chap da semana bo i nga shi rap ja cho de jo po taring ki le rim nang le gom su je ta di jap de lenge chu semana ge sa de de le chu ti ki hindi ke na ge khap ni mi go ju ne chu l semana
1: Namaskar Akashvani samachar ke sath main Priyanka Arora केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। ग्रेड ए धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,461 रुपए प्रति क्विंटल, हाइब्रिड ज्वार के लिए 4,023 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा के लिए 2,900 रुपए प्रति क्विंटल और अरहर दाल के लिए 8,400 रुपए प्रति क्विंटल होगा। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
2: ओन भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इम्पोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 5,000 रोजगार सृजित होगा। ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल को भी सशक्त करेगी। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए एक क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीवी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने वांछित नार्को आतंकवादी इकबाल सिंह उर्फ शेरा को गिरफ्तार कर लिया है। लंबे राजनयिक और कानूनी प्रयासों के बाद पुर्तगाल से उसके प्रत्यर्पण में सफलता हासिल की गई है। 2020 से फरार इस आतंकवादी को पाकिस्तान समर्थित नार्को आतंकी मामले में गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए।

0: आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में आज शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए यह मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं बेंगलुरु जीत दर्ज कर शीर्ष पर आना चाहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव को 213.67 मीटर तथा अनुसार 1404 किलोहर्ज को तरंगमा हामी आकाशवाणी को गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। यसका साथै एफएम कञ्चनजंघा 103 मेगाहर्ज अनि न्यूजन एआईआर मोबाइल एप मार्फत पनि हाम्रो यस प्रसारणलाई सुनिरहनु भएको छ। समय यस बेला स्टुडियोको घड़ी अनुसार साँझको 6:05 भइसकेको छ र अब लिएर उपस्थित भएको छौं दैनिक ग्रामीण कार्यक्रम।

0: सिक्किम हिमालयको काखमा अवस्थित एक सुन्दर र शान्त प्रदेश, भारतीय संघको अभिन्न अंगका रूपमा आफ्नो एउटा विशिष्ट पहिचान राख्दछ। हरेक वर्ष 16 मईका दिनलाई सिक्किमले आफ्नो राज्य स्थापना दिवसका रूपमा अत्यन्तै उत्साहका साथ मनाउने गर्दछ। यो दिन केवल एउटा राजनीतिक परिवर्तनको सम्झना मात्र नभएर एउटा राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट विश्वकै ठूलो लोकतन्त्रमा समाहित हुने ऐतिहासिक रूपान्तरणको उत्सव पनि हो। सिक्किमको इतिहास निकै प्राचीन र रोचक छ। सन् 1642 सिक्किममा नामग्याल वंशको शासन शुरू भएको थियो, जहाँ महाराजालाई धर्मराज वा छोग्याल भनिन्थ्यो। शताब्दीसम्म सिक्किम एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा रह्यो। ब्रिटिश शासनकालमा यो एउटा प्रोटेक्टोरेट वा संरक्षित राज्यका रूपमा रह्यो र भारत स्वतन्त्र भएपछि सन् 1950 भारत सिक्किम सन्धि भयो। तथापि समयको परिवर्तनसँगै सिक्किमका जनतामा राजनैतिक सचेतना बढ्दै गयो। जनताले उत्तरदायी सरकार र लोकतान्त्रिक अधिकारको माग गर्न थाले। सन् 1970 दशकको शुरूआतमा राजतन्त्र र जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूबीच तनाव बढ्यो। अन्तत सन् 1975 सिक्किम विधानसभाले राजतन्त्र अन्त गर्ने र भारतको हिस्सा बन्ने प्रस्ताव पारित गर्यो। यसपछि आयोजना गरिएको ऐतिहासिक जनमत संग्रहमा 97.5% जनताले भारतमा विलय हुने पक्षमा मतदान गरे। परिणाम स्वरूप भारतीय संसदले संविधानको 36 संशोधन पारित गर्दै 16 मई 1975 सिक्किमलाई भारतको 22 राज्यको रूपमा विधिवत रूपमा स्वीकार गर्यो। सिक्किम राज्य स्थापना दिवसलाई सम्पूर्ण राज्यभरि एक गौरवशाली पर्वको रूपमा मनाइन्छ। यस अवसरमा सरकारी तथा गैर सरकारी स्तरमा विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरिन्छन्। राजधानी गान्तोकमा मुख्य समारोह आयोजित हुन्छ, जहाँ राज्यपाल र मुख्यमन्त्रीले राज्यवासीलाई सम्बोधन गर्दै विकासका उपलब्धिहरू र भावी लक्ष्यहरू प्रस्तुत गर्दछन्। यसपालि 16 मईमा राज्य स्थापना दिवस समारोहमा सहभागी बन्न भारतका उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णनको आगमनको प्रस्तावित कार्यक्रमले यसको अझ महत्व बढेर गएको छ। हालै सिक्किमले आफ्नो राज्य स्थापनाको स्वर्ण जयन्तीको समापन गरिसकेको छ, जसमा प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिले सिक्किम र सिक्किमे जनताको महत्व बढाएको थियो।
1: साथियों, आज आर्थिक प्रगति और संसाधनों को लेकर विश्व का नजरिया तेजी से बदल रहा है। आज दुनिया सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की बात कर रही है। आज क्लीन एनर्जी पर दुनिया का फोकस है। आज ऑर्गेनिक फूड्स को प्राथमिकता दी जा रही है। मुझे खुशी है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट और सिक्किम इस फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ का बड़ा केंद्र है। सिक्किम ने पूरे देश को दिशा दिखाई है। सिक्किम ने तो 10 साल पहले 2016 में ही पूरे राज्य को ऑर्गेनिक स्टेट घोषित कर दिया था। हमारा डेमाजोंग अब केवल राइस उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता, उसकी पहचान अब ऑर्गेनिक राइस के लिए जो होने लगी है। बड़ी इलायची, अदरक, हल्दी, एवोकाडो, कीवी ऐसे कितने ही उत्पाद देश और दुनिया के बाजार तक पहुंच रहे हैं। सिक्किम में मेडिसिनल प्लांट्स की भी सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती है। ये भी स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने का जरिया बन रही है। साथियों, ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती का सिक्किम का मॉडल ये पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है। सिक्किम की लाइफस्टाइल, सिक्किम के संकल्प आज देश के विजन का हिस्सा बन चुके हैं।
0: अब उपराष्ट्रपतिको आगमनले यस दिवसको महत्व अझ बढाउनेछ, किनभने आजसम्मको इतिहासमा राज्य दिवस समारोहमा उपराष्ट्रपति जस्ता व्यक्तित्वको उपस्थिति भएको थिएन। यस अवसरमा सिक्किमका विभिन्न जात जातिहरूको समृद्ध लोक संस्कृति झल्किने झाँकी र नृत्य

0: भइसकेका छौं। यहाँकै फोनमा आधारित रमाइलो कार्यक्रम हेलो श्रोता, त आउनुहोस् कुरा गरौं आजको पहिलो कलरसित। हेलो नमस्कार, आकाशवाणी गान्तोक।
1: नमस्कार म्याडम, किरिमिरी कुरासा कालरी जिला कुरियर छत्तीसगढ़ से इंद्रपान सिंह बोल रहा
0: हूँ। इंद्रपान सिंह
1: जी मैडम, आप भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ, ड्यूटी परेड में हूँ और ये जंगल नर्सरी के बीच में छाया में खड़ा हूँ, ठंडी ठंडी।
0: जी जी जी, सुनाई दे रहा है कि मोर का आवाज है क्या?
1: ठीक आवाज है मैडम।
0: जी जी जी, सुनाई तो दे रहा है मगर किस पक्षी का आवाज है पता नहीं चल रहा है।
1: यहाँ पर मैडम की हम लोग कई पक्षी हमें चिड़िया हमें चुपचुपाते रहते हैं तो आवाज आपको नहीं देता।
0: जी जी जी जी, एकदम शान सा खाली पक्षी का आवाज, बहुत मजा आ रहा होगा ना?
1: जी मैडम, यहाँ पे सुंदर वातावरण है और ये जबरदस्त हवा का,
0: तब तो गर्मी से थोड़ा आराम मिल रहे।
1: जी मैडम, गर्मी से इसलिए छाया में भागना पड़ता है।
0: बहुत अच्छा, आप बता रहे हैं ना, तो पेड़ के नीचे बैठे है, छाव के नीचे बैठे है, पक्षी पक्षियों का आवाज सुनने के मिल रहा है, तो लग रहा है कि पूरा फिल्म जैसा है।
1: जी जी
0: जी, तो बताइए उसी खुशी में किस फिल्म का गाना सुनाए आज आप?
1: आज मैं सुनूंगा मेरा फिल्म का नाम है कामयाब, और सबसे पहले गीत आपको पूरे भारत को आकाशवाणी गणतोक में जुड़े सभी लोगों को, आपके परिजन को, दोस्तों को, आपके सहयोगियों को पूरे जरूर सुना।
0: धन्यवाद।

0: हेलो आकाशवाणी कांतो,
1: मैंने रेडियो सेट डीटीआर और न्यूज एआईआर ऐप के माध्यम से आपने टून कर रखा है सिक्किम का आकाशवाणी गांगटोक चलन और प्रोग्राम जारी है। हेलो श्रोता।
0: अरे बाप रे, ऐसे करते हैं ना, आज आप प्रोग्राम चलाइए, मैं श्रोता बनकर फोन करूंगी।
1: जी मैडम, तो एक ही बात है मैडम, आप करें तो हम करें तो एक ही बात है।
0: एक ही बात है। हाँ। नहीं इतना परफेक्ट हो गए ना, इतना अच्छा ओपनिंग।
1: जी मैडम, क्योंकि आप हमारा कुछ नहीं है मैडम, ये सिर्फ आपका ही और आकाशवाणी गांगटोक का प्यार है जो हमें ये सीखने को मिल रहा है मैडम।
0: जी जी ये तो है, ये तो
1: जी, नहीं तो हमको कुछ भी नहीं आता, हम कहाँ और आप कहाँ, ये तो रेडियो के माध्यम है जो इतना प्यार प्रेम हमारे और
0: जब जब हम छोटे छोटे थे ना, तब हमारे घर में भी ऐसे माँ माता जी सुबह सुबह रेडियो खोल देते थे, तो हम लोग भी सुन सुन के ही सीखे।
1: वही तो
0: जैसे
1: सुन
0: रेडियो में
1: आप,
0: बोलता था, हम लोग भी घर में ऐसे बोलता था।
1: जी जी हाँ वही है, क्योंकि ये रेडियो का माध्यम ऐसा है कि इनसे सुन सुन के सीख भी गए।

0: और गर्मी का कोई इंतजार है आपको?
1: गर्मी का तो इंतजार, जैसे कि ठंड का मजा लिया तो गर्मी का भी लेना पड़ेगा ना।
0: हाँ वो तो है, इधर तो मैडम काफी गर्मी गर्मी आ गई। और हाँ जी, तो मैं आज फिल्म का नाम तो मेरे को मालूम नहीं, और मैं गाना गा के आपको सुना दूँ। यार मेरे यारम तूने दिल चुराया मेरे यारम, ये गा। तो सबसे पहले आप सुनेंगे
1: जी, धन्यवाद।
0: और मेरा दोस्त है राकेश से, भगवान सिंह परवान जी है, अभिनाथ जी है, रमेश प्रजापति जी है, गोल्डी बाई है, अमर साहू है, और रघुवीर पंडा जी, और आकाशवाणी गांटोक के श्रोताओं, आकाशवाणी गांटोक के चाहने वाले श्रोताओं के लिए, खासकर
1: सभी के लिए ना।
0: थैंक यू मैडम
1: जी, धन्यवाद।

0: हेलो आकाशवाणी कांतो
1: जी, नमस्ते।
0: नमस्कार जी।
1: जी मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: प्रेम सिंह सिसोदिया जी, प्रेम सिंह सिसोदिया जी है ना, हर एक सप्ताह फोन कर मुझे कभी कभी आम के बात बताते थे, कभी इमली का बात बताते थे।
1: जी जी, और एक बात और आपको आज बताऊंगा मैं।
0: जी
1: जी, अगर आपको किसी को डांस सिखाना है ना,
0: जी जी,
1: अगर आपको नहीं आए फिर भी उन्हें मतलब 12 से 1 बजे के बीच में बिना जूता चप्पल के छत पे ले जाइए, वो अपने आप डांस सीख जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे इतनी गर्मी है।
0: मतलब उस 12-1 बजे तक उतना जमीन गर्म हो जाता है ना, छत
1: जी
0: भी
1: हाँ,
0: गर्म हो
1: बिना
0: जाता है,
1: जूता
0: तो अपने
1: चप्पल
0: आप
1: के अगर आप छत पे जाएंगे ना, तो अपने आप डांस करना शुरू कर देंगे।
0: अपने आप पेंट झिड़कने लगता है।
1: जी, पूनम जी है ना, मैंने खास तौर कर इसीलिए कॉल किया आज
0: जी
1: बात बताने के लिए।
0: जी जी ये तो
1: जी
0: बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दिया। तो किसी को डांस नहीं आता है तो पूरा गर्म छत पर चढ़ जाओ, फिर अपने आप डांस आ जाता है ताते।
1: जी बिल्कुल, बिना गाने के डांस हो जाएगा।
0: जी, इतना गर्मी चल रहा है ना, कितना डिग्री है अभी?
1: जी अभी 43 डिग्री के करीबन चल रहा है हमारे यहाँ पे।
0: बाप रे, अभी
1: जी
0: आप
1: हाँ,
0: बिलीव करेंगे, यहाँ पर 7 डिग्री चल रहा है, 7 डिग्री।
1: ओ बाप रे, इतना कम।
0: हम लोग के यहाँ तो अभी तो बारिश का सीजन भी चल रहा है, तो बारिश होने से तो और भी ठंड लगता है।
1: जी बिल्कुल जी, मुझे भी आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है।
0: जी जी जी जी फिर गाना कौन सा सुनाए?
1: जी बताना चाहूंगा पूनम जी आपको मैं, फिल्म का नाम है कुछ कुछ होता है, और उसका टाइटल सॉन्ग भी सुनवा दीजिएगा आप।
0: जी जी सुनाते हैं फिर कुछ कुछ होता है ये फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग आपको।
1: जी थैंक यू सो मच पूनम जी,
0: धन्यवाद।
1: सच में मुझे आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा।
0: हमको भी बहुत अच्छा लगा।

0: श्रोता तपाईहरुले सुनिरहनु भएको छ यहाँहरुको फोनमा आधारित रमाइलो कार्यक्रम हेलो श्रोता। यदि तपाईले पनि हाम्रो कार्यक्रम हेलो श्रोतामा कल गर्न चाहनुहुन्छ भने 03592201171 मा फोन गरेर आफ्नो कुराहरु राख्न सक्नुहुनेछ। त आउनुहोस् फेरि पनि कुरा गरौं अर्को कलरसित। हेलो आकाशवाणी कान्तो।
1: हेलो आकाशवाणी कान्तो
0: जी नमस्कार, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं अपू नंबर नहीं क्या?
0: जी जी।
1: अरे पहचान लिया मैंने, मैं तो सतीश बात कर रहा हूँ। हाँ मैडम जी नमस्कार।
0: नमस्कार जी, सतीश जी कैसे?
1: मैं बढ़िया हूँ और मैं अपने मौसी के घर से आए थे।
0: जी, मतलब कौन सी जगह पर है
1: ये? यूपी में।
0: यूपी में हो? यूपी में अभी गर्मी तो बहुत होंगे ना?
1: हाँ गर्मी होगी, आपके इधर गर्मियों में तो सर्दी है, तो सर्दी भेज दीजिए मैडम।
0: हम तो कल आपने सच बोला, यहाँ पर तो अभी भी सर्दी ही चल रहा है।
1: हाँ सर्दी चल रहा है क्योंकि हुआ तो ठंडी ठंडी हवा भेज दो तो बढ़िया रहेगा, मेरे यूपी में गर्मी है।
0: जी जी, अब ये तो मुझे नहीं भगवान से मांगना पड़ेगा आपको। तो सतीश जी बताइए गाना कौन सा सुनाया?
1: आवाज मुझे गाना सुना है, फिल्म का नाम है दिल गाने बोले ओ प्रिया प्रिया।
0: सुनाते हैं फिल्म दिल से ये गीत।

0: हूँ दीदी।
1: भगवान जी नमस्कार।
0: नमस्कार दीदी।
1: भगवान सिंह जी, तो पहले तो हमारे कार्यक्रम में नियमित कॉलर थे, अभी थोड़ा गैप कर फोन कर रहे हैं ना?
0: जी हाँ दीदी, कुछ गैप से भी लगाते हैं ताकि नए श्रोताओं को मौका मिल जाए। वो वैसे भी दीदी मिलता भी नहीं है, लाइन इतनी बिजी रहती है।
1: बहुत ही बिजी रहता है, ये तो है
0: जी जी।
1: कभी कभी मिल जाता है ना?
0: कभी कभी मिलता है, लेकिन एक महीने में मिल जाए दीदी बहुत है।
1: बहुत है ना? हाँ, ऐसे तो ऐसे करने से तो सबका एक अनुभव, सबका सुझाव सुनने को मिलेगा।
0: और दीदी आपका कार्यक्रम है ना, हफ्ते में एक ही दिन आता है, तो इसमें क्या है नए श्रोता नहीं जुड़ पाते हैं, तो नए श्रोता को मौका मिल जाता है अगर थोड़ा बहुत अंतराल रख देते हैं।
1: ये तो है। भगवान जी कैसे अभी?
0: अच्छे हैं दीदी, 42-43 डिग्री हमारे इधर टेम्परेचर है दीदी, काफी गर्मी है अभी।
1: काफी गर्मी है ना? हाँ, सब लोग जितने भी आज तो फोन कर रहे हैं, सब लोग बता रहे हैं कि गर्मी है, 40-45 डिग्री चल रहा है।
0: जी जी। और आपके इधर कैसी गर्मी है दीदी?
1: नहीं नहीं, इधर तो अभी भी थोड़ा ही सर्दी जैसा ही लग रहा है, जब बारिश होता है ना और भी ठंड लगने लगता है।
0: जी जी। और आपके इधर जैसे ठंडा मौसम रहता है दीदी?
1: बहुत ही ठंडा रहता है।
0: तो दीदी मैं फिल्म का नाम बताना चाहूंगा आपको, जुल्म की पुकार है फिल्म का नाम, और गाने के बोल हैं, इस इश्क मोहब्बत की है अजीब रस्में, कभी जीने के वादे कभी मरने की कस्में। और कुछ दोस्तों का नाम ले सकते हैं दीदी?
1: जी जी जरूर।
0: हमारे मित्र हैं रमेश प्रजापति जी हैं, केशव सिंह राजपूत जी, राम बाबू शर्मा जी, मांगेलाल चंदेन जी, लक्ष्मण सिंह चाय, और हमारे ग्रुप में से हैं गौतम राय बोले जी, धीरज भाई रवाड़ी जी, और प्रेम सिंह सिसोदिया जी, और हमारे मित्र हैं राकेश जी हैं शिमला से, और पूरन वर्मा जी हैं, और सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे। पूनम दीदी हैं कानपुर से, त्रिपुरा से बहन संगीता देवना जी, आशुतोष देवना जी, अविनाश देवी जी, और आपके साथ सुनना चाहेंगे दीदी।
1: जी धन्यवाद, भगवान जी ऐसे फोन करते रहेगा।
0: धन्यवाद दीदी।

0: हेलो
1: हेलो,
0: आकाशवाणी कान तो
1: नमस्ते। मैं
0: नमस्कार जी।
1: त्रिपुरा से संगीता देवनाथ बोल रही हूँ। जी,
0: ओ संगीता जी,
1: आप अच्छी हो मैम?
0: अभी तो बहुत अच्छी हूँ।
1: जी, मैं भी बढ़िया हूँ। और काफी दिनों के बाद फोन लग गया है।
0: जी,
1: तो मैम, आज कुछ जल्दी में हूँ, गाना बोल देती हूँ।
0: ओ जल्दी में है फिर भी फोन किया, बाप रे।
1: जी,
0: ओ चलते चलते फोन लगा दिया, लग भी गए ना। जी,
1: नदिया की पार मूवी का नाम
0: जी
1: और गाने का बोल है जोगी जी धीरे धीरे।
0: जी
1: और
0: किस
1: अभी
0: किस
1: जितना भी श्रोता सुन रही है सबको लेके सुनना है मुझे।
0: सभी के लिए सुनाना चाहेंगे संगीता देवनाथ जी के अनुरोध पे फिल्म नदिया के पार से ये गीत।
1: तो फोन छोड़ती हूँ। राधे राधे,
0: जी
1: नमस्ते।
0: नमस्कार।

0: हेलो आकाशवाणी गांतो।
1: हेलो श्रोता, आकाशवाणी गांतो
0: जी नमस्कार।
1: आदरणीय पूनम जी सर नमस्कार
0: जी। अपना थोड़ा परिचय दीजिए अपने स्टाइल में।
1: जी मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश की आदरणीय पूनम जी से वार्तालाप कर रहा हूँ। हेलो श्रोता आकाशवाणी गांतो,
0: आपका तो मानना पड़ेगा
1: जी। धन्यवाद
0: तरीका।
1: धन्यवाद धन्यवाद। आप तो इसी तरह से हौसला बुलंद करती हैं, हमें प्रोत्साहित करती हैं, उत्साहित करती हैं, और हम बिना गंतव्य पहुँचे जी है कि मानता नहीं।
0: ये तो है, हर एक सप्ताह मतलब देर हो या जल्दी हो पहुँच तो जाते हैं आप।
1: ये कोशिश करता हूँ कि हमारी ट्रेन गंतव्य की छोटी नहीं, और हम बस टेलीफोन के माध्यम से आपके पास पहुंच जाते हैं।
0: जी ये तो बड़ी बात है, समय में पहुंच जाते हैं।
1: जी जी अच्छा लगता है जब हम गंतव्य पहुंचते हैं, आपसे वार्तालाप होती है, दिल की बातें करते हैं और अपने धुन से गीत सुनते हैं, बहुत ही खुशी प्रसन्नता होती है।
0: ये तो है ये तो है, हम लोग को भी बहुत प्रसन्नता होती है आप लोग से बात करने के बाद।
1: और बताएं वहाँ का वातावरण कैसा है, गर्मी हुआ कि नहीं हुआ?
0: गर्मी तो अभी भी इतना तो नहीं हो रहा है,
1: हमारे मथुरा में तो इस वक्त बहुत तेज गर्मी हो रही है, चिलचिलाती हुई धूप रहती है, गरम गरम हवाएं चलती रहती हैं, तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड और कभी कभी तो 43 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है, रात में 28-29 के आसपास रहता है, फिर भी गर्मी महसूस होती है, काफी गर्म रहता है, गरम गरम हवाएं चलती है, बाहर निकलने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती है। और मैं तो आकाशवाणी की कार्यक्रम सुनते रहता हूँ, मस्त रहता हूँ, और चाहे गर्म चाहे ठंडा रहे हमसे क्या लेना देना है, हम तो अपने आकाशवाणी के साथ दिन गुजार देते हैं।
0: जी जी जी। अब जिस बात में खुद खुश हो जाते हैं उसमें गर्मी हो या ठंडा हो पता ही नहीं चलता है।
1: जी बिल्कुल, ये बात तो सही
0: है। मस्त रहते हैं
1: जी।
0: तो शारदा जी आज आपको गाना कौन सा सुनाए फिर?
1: आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है नवरंग।
0: नवरंग।
1: आधा है चंद्रमा बस आधी। जी ये प्यारा सा खूबसूरत गीत मैं अपनी प्यारी प्यारी पूनम दीदी को शारदा समर्पित करते हुए याद करना चाहता हूँ। हमारे बहुत अच्छे प्यारे मित्र हैं अविनाश जी, आशुतोष जी, संगीता जी, लोकेन्द्र वर्मा, राजू यादव और साथ में अर्जुन प्रधान है, राकेश कुमार जी हैं, पूरन वर्मा, पुरुषोत्तम जी हैं, पुष्कर नाथ जी हैं, इन सभी साथ साथ में विजय पांडे और केशव प्रसाद शर्मा को भी याद करना चाहता हूँ, मांझीलाल चंदेल, हसमुख भाई जो काफी दिन से आपसे जुड़े हुए हैं।
0: तो
1: ये प्यारा सा खूबसूरत गीत पूनम जी के साथ आकाशवाणी गंतव्य सुन रहे सभी श्रोताओं को सादर समर्पित करता हूँ।
0: जी जी धन्यवाद। तो सुनाते हैं कि

0: हेलो आकाश फनिकांत।
1: हाँ जी नमस्ते।
0: नमस्कार,
1: मैं डिस्ट्रिक्ट राज्य सुनारी असम से भाईकन मुंडा बोल रहा हूँ।
0: ओ असम से बोल रहे हैं, मुझे तो लगा, मैं तो लगा कि कोई नेपाली में बात कर रहा है। क्या बताया नाम आपने?
1: भाईकन मुंडा।
0: भाईकन मुंडा क्या है नाम का, आपका नाम का मीनिंग क्या है?
1: मीनिंग मतलब ये भाईकन मतलब ये छोटा भाई होता है।
0: ओ
1: भाईकन भाईपी ये सब असमी।
0: ओ आसामीस भाषा में।
1: हाँ
0: वही तो एक्स्ट्रा, एकदम एक्स्ट्रा नाम सुनाई दिया ना। आसाम से है ना?
1: हाँ जी हाँ
0: जी। अभी आसाम में क्या चल रहा है, गर्मी का प्रकोप कितना है?
1: गर्मी तो है ज्यादा ही है।
0: करते क्या है आप?
1: मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा हूँ, हाईवे रोड प्रोजेक्ट।
0: ओ रोड प्रोजेक्ट में काम करते हैं इतने धूप में?
1: काम तो करना ही पड़ेगा कैसे
0: काम
1: भी
0: तो
1: हो।
0: करना ही पड़ेगा, ये तो है, काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे जितना भी बारिश हो, बाढ़ आ जाए, धूप लग जाए, काम तो करना ही पड़ेगा। तो अच्छा लगा आपने इतने दूर से हमारे कार्यक्रम में कॉल किया। तो बताइए गाना कौन सा सुनाए?
1: मैम 1993 में रिलीज हुई फिल्म का नाम है किशन अवतार। में गाना है मेरा महबूब मुझसे ऐसे मिला। अमल बसुमतारी, विमल बसुमतारी, रमेश पात्र, अरुण पात्र, लाकी जुगेंद्र रंगी, अंजलि बसुमतारी, जितने भी आकाशवाणी जनकर के निमित्त होता है सबके लिए धन्यवाद।

0: हेलो आकाशवाणी गांतो।
1: हेलो बहन जी, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: बहन जी, मैं पालमपुर जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से जगदीश राय गर्ग बोल रहा हूँ।
0: ओ जगदीश जी।
1: जी बहन जी,
0: हिमाचल में तो मैं वहाँ का

0: मौसम के बारे में नहीं पूछेंगे। मुझे लगता है कि ये सिक्किम के जैसा है, अब इतना तो ठंड नहीं हो रहा है, मतलब गर्मी तो नहीं हो रहा है।
1: गर्मी तो बहन जी बिल्कुल ही नहीं है, बल्कि कभी कभी तो ऐसा हो जाता है, बरसात हो जाती है तो जहाँ ठंडी
0: हो जाती है, यहाँ भी ऐसा ही है।
1: बड़ा बढ़िया मौसम होता है जहाँ का भी, और आपके सिक्किम का भी बढ़िया होता है।
0: ऐसा ही है। अभी तो क्या है कि जितने भी और राज्य से फोन कर रहा है तो वो लोग बताते हैं कि 40-45 डिग्री चल रहा है उन लोग के यहाँ।
1: हाँ, तो ऐसे तो पंजाब में, मैं पंजाब में भी रहता हूँ, 6 महीने हिमाचल में रहता हूँ, तो पंजाब में तो 45 डिग्री का सामना भी करना पड़ता है।
0: करना पड़ता है ना।
1: बिल्कुल करना पड़ता है, और इधर आ जाते हैं तो फिर जैसे ठंडी हवाओं का सामना करना पड़ता है।
0: मुझे लगता है वहाँ पर हिमाचल में भी इससे ठंडी हवा, एकदम फ्रेश हवा, वातावरण भी इस तरह का जैसा हरियाली होगा ना, ऐसा लगता है।
1: बिल्कुल बहन जी, जहाँ ऐसे लगता है कि जैसे कुदरत ने अपना सब कुछ यहीं बांट दिया है हिमाचल वालों को।
0: इतना अच्छा,
1: बहुत अच्छा वातावरण है,
0: और इतने अच्छे हिमाचल में रहने वाले आप लोग जैसे अच्छे।
1: जी जी जी बिल्कुल जी।
0: तो जगदीश जी बताइए, तो ठंडी ठंडी मौसम में गाना कौन सा सुनना चाहेंगे हिमाचल से?
1: बहन जी गीत बेशक आज थोड़ा सा, क्योंकि आज मनहर उदास जी का जन्मदिन है, तो उन्हीं का बेहद मकबूल रहा गीत, तो उसकी दो लाइनें मैं गुनगुना के बताना चाहूंगा जी। आप

0: हेलो आकाशवाणी गांतोक।
1: हेलो नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
1: जी मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश तेरी बोल रहा हूँ।
0: अविनाश जी
1: कैसे हैं आप?
0: अविनाश जी मैं इस सप्ताह ठीक हूँ, पिछली बार थोड़ा स्वास्थ्य में गड़बड़ हो गया था।
1: अच्छा अच्छा
0: अभी ठीक हूँ।
1: अच्छा चलिए, अच्छी रहने से ही भलाई है क्योंकि आप जब आते हैं कार्यक्रम में तो कार्यक्रम का मजा ही

0: वो तो अलग होता है, हम सबको बहुत ही अच्छा लगता है।
1: जी जी हमको भी आप लोग से बात करना इतना अच्छा लगता है ना, तो घर में बैठकर सोने का मन ही नहीं करता।
0: जी, बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर मनुष्य का अगर स्वास्थ्य सही रहेगा तो सब कुछ वो माइंड भी फ्रेश रहता है, अच्छा भी लगता है।
1: ये तो
0: और
1: है,
0: अगर अगर स्वास्थ्य में ही थोड़ा गड़बड़ हो जाता है तो पूरा मतलब कि जैसे सुख चैन ही छीन जाता है, ऐसा
1: ये
0: लगता है।
1: तो है, इसीलिए बोलते हैं स्वास्थ्य ही धन है।
0: जी, स्वास्थ्य धन है, सही बात है।
1: तो आप लोग तो ठीक होंगे,
0: हाँ, हम लोग सब बहुत बढ़िया है।
1: काम धंधा भी चल रहा है?
0: जी, बहुत बढ़िया चल रहा है। तो आज मुझे गाना सुना दीजिएगा, मूवी नाम तो पता नहीं लेकिन गाने का बोल है, यूं ही कट जाएगी सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगा सफर साथ चलने से। ये किस सुना दीजिएगा, कुमार सानू जी की आवाज में।
1: जी, तो ये प्यारा सा
0: और मेरे
1: गीत
0: साथ
1: किसका
0: पहले
1: सुना
0: तो
1: जाए?
0: आपके लिए रहेगा, उसके बाद कानपुर से पूनम जी हैं, और रमेश प्रजापति जी हैं, पूरन वर्मा जी हैं, राकेश जी हैं, शारदा प्रसाद जी हैं, अरविंद प्रधान जी हैं, अमर सिंह साहू जी हैं, और आशुतोष जी हैं, संगीता जी हैं, प्रेम सिंह जी हैं, और भगवान सिंह जी, केसर सिंह जी, राम बाबू शर्मा जी, सबके लिए गीत डेलीगेशन रहेगा।
1: जी धन्यवाद अविनाश जी, इतना प्यारा गीत सुनाते हैं आपके लिए,
0: जी, धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: श्रोताहरूले यतिन्जेल सुन्दै हुनुहुन्थ्यो शास्त्रीय संगीतको कार्यक्रम सुर संसार अन्तर्गत अजय पहंकरद्वारा शास्त्रीय गायन। हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। समय यसबेला स्टुडियोको घड़ी अनुसार 8:45 हुने लागिरहेको छ र अब केही क्षणमा सुन्नुहुनेछ आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट समाचार क्रमैले हिन्दी अनि अंग्रेजीमा। केही क्षण प्रतीक्षा साँच्नुहोला।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देशभर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है।

0: नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इम्पोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाईस्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की यह पहली सेमी हाईस्पीड परियोजना होगी, इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाईस्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। सीबीआई इस मामले में शुरूआती जांच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वाहनों के बेड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों विधायकों के सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
2: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
3: People to people connect.
1: श्री जॉर्ज ने बताया कि 4 यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
3: The visit to the 4 European countries.
2: 4 यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
3: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
1: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से 3 भारतीय प्राचीन वस्तुओं की वापसी का उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था अब वापस लाई जा रही है।
4: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद यह घोषणा की। डॉ शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे।
5: इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही राज्य के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी रस्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों को भी इससे बाहर रखा गया है।
6: आउटसाइड द स्कोप ऑफ यूनिफॉर्म सिविल को।
1: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने पांचवी बार पद ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा, खेल और औद्योगिक

0: औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड धारकों को 3 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, इंदिरा गांधी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और मॉडल विद्यालय स्थापित करना शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी से जारी की। उन्होंने 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रूपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत पर लोगों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने भाजपा एनडीए सरकार की विकास और सुशासन नीतियों पर अटूट विश्वास व्यक्त किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर स्थिर हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 7 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 95 रूपए और 70 पैसे पर बंद हुआ। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक ब्रेंट क्रूड $107.62 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।
0: गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। महाराष्ट्र में आज नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगों का अनावरण किया गया। इसमें त्रिशूल दर्शाया गया है और गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में चित्रित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोगो भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रूपये की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देशभर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet increases minimum support prices MSP of 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Cabinet also gives nod for promotion of surface coal and lignite gasification projects worth 37,500 crore rupees. CBI arrests 5 persons in connection with NEET UG 2026 paper leak case. Raids continue in several states. Prime Minister Narendra Modi reduces his convoy size, prompting BJP chief ministers and other leaders to adopt austerity measures. West Bengal government decides to hand over recruitment scam probes to CBI, lifts all interstate restrictions on the movement of essential products. And in weightlifting, India's Ganeshwari Yadav bags a silver and bronze at Asian Senior Championships in Gandhinagar. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCE,

0: चर्चा का विषय है।
1: दुनिया की नब्ज पश्चिमी एशिया के तेल कुओं की धड़कनों से जुड़ी है। जब इन धड़कनों में युद्ध का शोर सुनाई देने लगे तो वैश्विक बाजार की सांसें फूलने लगती हैं। लाल सागर की लहरों से लेकर तेल के टैंकरों के बदलते रास्तों तक, आज एक बार फिर दुनिया ब्लैक गोल्ड यानी कच्चे तेल की अस्थिरता के मुहाने पर खड़ी है। जब हॉर्मुज की जलधारा में हलचल होती है तो दिल्ली, मुंबई और हर भारतीय शहर की सड़कों पर उसकी गूंज सुनाई देती है। लेकिन 2026 का भारत कल की तुलना में कहीं अधिक सजग है। आज हम केवल तेल के दाम गिरने का इंतजार नहीं करते, बल्कि ऊर्जा के नए विकल्पों और सामरिक भंडारों से अपनी सुरक्षा की दीवार ऊंची कर रहे हैं। नमस्कार, चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। आज हम चर्चा करेंगे पश्चिम एशिया संकट और ऊर्जा बाजार, उभरती चुनौतियों के बीच भारत की तैयारियों पर। आज के कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत पश्चिम एशिया के इस झटके को सहने के लिए तैयार है और कैसे हमारी एनर्जी डिप्लोमेसी वैश्विक राजनीति के नए समीकरण लिख रही है।

0: कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व सीएमडी ओएनजीसी के सुभाष कुमार और ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
2: थैंक्स सोना।
0: सुभाष जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। और हम सब जानते हैं कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 85% आयात करता है। जो इस समय हॉर्मूज की मौजूदा स्थिति है, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि भारत की जो सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति है, जिसमें रूस, इराक और अमेरिका के बीच जो संतुलन भी है, कितना प्रभावी सिद्ध हो रही है?
2: सो आनंद जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। एक्चुअली आज के दिन में भारत जो है अपनी सप्लाई के लिए हॉर्मूज पे ओवरली डिपेंडेंट है। इनफैक्ट यदि हम तेल का देखें तो लगभग 80% से ऊपर वो हॉर्मूज से आता है और 40-50% तो गल्फ स्टेट से आता है। एलपीजी का भी इसी हिसाब से देखें तो लगभग सारी एलपीजी इस प्रॉब्लम से पहले गल्फ स्टेट से ही आती थी। तो अब इस हालात में एक्चुअली जो एनर्जी का चीज है, एक और एक एस्पेक्ट है कि इस क्षेत्र में, खाड़ी क्षेत्र में, ना केवल एनर्जी के लिए इम्पोर्टेंट है बट यहाँ पे लगभग 1 करोड़ इंडियंस भी रहते हैं और जो कि इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉरेन एक्सचेंज रिमिट करते थे। तो आज की डेट में गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिए हैं उसमें उन्होंने जो क्रूड जो सोर्सिंग है वो डाइवर्सिफाई की है और इस डिफिकल्ट सिचुएशन में किसी तरह मॉलिक्यूल्स पे की सप्लाई को कंटिन्यू करने के लिए अमेरिका, लैटिन अमेरिका, रशिया और अफ्रीका से भी तेल जो है इंपोर्ट किया है। तो ये जो सारा एक्शन है ये अभी तक काफी सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि यदि पूरा इफेक्ट इस डिसरप्शन का पड़ता तो शायद सिर्फ इसके भरोसे एक्चुअली इंडिया में तेल और तेल के प्रोडक्ट्स की किल्लत हो सकती थी।
0: पश्चिमी एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि रोजमर्रा के जीवन में वो कैसे बदलाव लाकर इस संकट के समय देश और सरकार को बेहतर करने में मदद कर सकते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या अपील की है।
3: मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें, जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आएं। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। साथियों, सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा।
0: नरेंद्र जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी बात ऊर्जा की होती है और भविष्य की तरफ हम देखते हैं तो स्ट्रैटेजिक रिजर्व यानी एसपीआर की भी चर्चा होती है और कई सारे मंत्रालय की तरफ से ये बयान दिया गया कि भारत के पास 74 दिन, 80 दिन, 60 दिन के आसपास का रिजर्व है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा हम विश्लेषण के नजरिए से देखें तो विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पादूर में भारत ने जो अपने नए रिजर्व की खोज की है, क्या आपको लगता है कि अगर युद्ध लंबा चला तो भारत के लिए ये 3 सेंटर्स या कुछ और सेंटर्स एनर्जी शॉक से बचाने के लिए पर्याप्त हैं?
1: देखिए, हमको देखना होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था का साइज क्या है। आज हम दुनिया की अगर जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जो लार्ज इकोनॉमी, उनमें फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और किसी भी अर्थव्यवस्था का, खासतौर से अगर आप विकासशील अर्थव्यवस्था है जो भारत है, उसकी जो बैकबोन होती है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो ऊर्जा होती है। बिना ऊर्जा के अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ती है। और जब विकासशील अर्थव्यवस्था जैसी होगी, खासतौर से भारत जैसी, वहां ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा होती है। हमारे देश में तेल की खपत जो है वो लगभग 3.5% से 4% प्रतिवर्ष बढ़ रही है, क्योंकि देश का विकास हो रहा है, क्योंकि प्रगति हो रही है, क्योंकि ज्यादा लोग जो है वो जो गरीबी से बाहर आ रहे हैं, मिडिल क्लास के अंदर आ रहे हैं, तो इसलिए उसकी खपत बढ़ रही है। हम आज की तारीख में लगभग 57 और 58 लाख बैरल तेल प्रतिदिन उसकी हमारे यहां खपत है, 5.8 मिलियन रफली बैरल्स पर डे, और उसका भारी मात्रा में लगभग 53 लाख बैरल हम आयात करते हैं लगभग 42 अलग अलग देशों से। तो ऐसी स्थिति के

0: हमारे सामने जो है दुविधा ये होती है, क्या हम जो विकास की गति है उसको रोकें, या वो लोग जिनको अभी भी और ऊर्जा की आवश्यकता है क्या उनको हम रोक सकते हैं, या किस हिसाब से हम ऊर्जा का इस तरह का प्रयोग करें जिससे कि हमारे को दिक्कत ना हो। जहां तक अब युद्ध जो है ये भारत ने तो शुरू नहीं किया, जैसे जो कोविड था, कोविड की शुरुआत चाइना से हुई थी, ये युद्ध तो फारस की खाड़ी से शुरू हुआ है, खासतौर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो है सबसे बड़ी दिक्कत वहां से आ रही है। तो ऐसे में भारत जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का उपभोक्ता है, ऊर्जा का उपभोक्ता है, दूसरा सबसे बड़ा आयातक है और भारी तेजी से जो आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, तो हमारे सामने चुनौती ये हो जाती है हम इसको कैसे देखें। जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की आपकी बात करी गई, स्ट्रेटेजिक रिजर्व इसलिए बनाए जाते हैं कभी कोई ऐसे हालात पैदा हो जाए कि देश के अंदर जो तेल लाने में जो है डिस्ट्रप्शन हो जाए, मतलब विदेशों से तेल लाने में दिक्कत हो, तो हम उसका प्रयोग कर सकें। लेकिन हमारा इतना विशाल देश है और इतनी तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है कि हमारी जो जरूरत है वो बहुत ज्यादा है। हालांकि हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व जिनको एसपीआरस बोलते हैं वो है, लगभग 25 से 28 दिन के रिजर्व हमारे पास वो हैं। इसके अलावा जो तमाम रिफाइनरीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके जो है ऑयल टैंक फार्म्स होते हैं, उनके अंदर भी हमेशा क्रूड ऑयल जो है और प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर हम उन दोनों को जोड़ लें तो हमारे पास 50 से लेकर के 55 दिन के रिजर्व तो होते हैं। और दूसरा ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी पूरी दुनिया के अंदर ऐसे अच्छे रिलेशंस हैं, खासतौर से जो तेल के निर्यातक हैं, ऊर्जा के निर्यातक हैं, कि वह हमने जो है कहीं ना कहीं से तेल का इंतजाम हो रहा है। और आज भी भारत उन गिने चुने देशों के अंदर है जहां पर पेट्रोल या डीजल की कहीं कोई किल्लत नहीं है, उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है। और दाम भी भारत में अगर आप देखें अन्य देशों के मुकाबले तो काफी हुए, तो चूंकि हमारे अच्छे रिलेशनशिप हैं। और दूसरी बात, एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, चूंकि हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल के उपभोक्ता हैं और दूसरे सबसे बड़े आयातक, हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी होती है टू सिक्योर सप्लाई। लेकिन जो तेल के बड़े निर्यातक हैं, सऊदी अरब हो गया, अमेरिका हो गया, कुवैत हो गया, ईरान, इनके लिए आवश्यक होता है भारत से अच्छे संबंध रखें, क्योंकि उनकी एनर्जी सिक्योरिटी डिमांड से ताल्लुक रखती है। और डिमांड कहां सबसे ज्यादा पैदा हो रही है, वो भारत में। पूरी दुनिया में ऑयल की डिमांड का लीडर आज कौन है, वो भारत है। तो वो भी भारत से अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, इसलिए ये भी हमको सिक्योरिटी देता है। आपने जिक्र किया एनर्जी डिप्लोमेसी का, साथ में मैंने आपको ये बताया कि हिसाब से उनके लिए भारत एक हम बाजार है, इसलिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हमारा अभी तक जो देखा जाए, अब बहुत लंबा युद्ध चलता है, डिस्ट्रप्शन बहुत बड़ा हो जाता है, वो तो भविष्य के गर्भ में है, उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। लेकिन आज के धरातल पे जब मैं देखता हूं, ठीक है, तैयारी हमको चाहिए, कंजर्वेशन हमको करना है, तेल को हमको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन पैनिक बटन दबाने की कोई जरूरत नहीं है।
1: जी बिल्कुल, आपने जिस तरफ चर्चा को आगे बढ़ाया कि भारत के पास अभी पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि भारत के पास आने वाले कुछ महीनों के लिए रिजर्व मौजूद हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: Our LPG, the cylinder gas which you use in kitchens, about 60% used to come from the Strait of Hormuz. Now we had to make arrangements. I am amazed at what we were able to do. Our domestic production of LPG prior to the crisis was 35,000 or 36,000 metric tons per day. We ramped up our domestic production from 36,000 to 54,000 metric tons. This by itself is a mind-boggling thing.
1: सुभाष जी, भारत सरकार लगातार कुछ नए प्रयोग कर रही है और इसी दिशा में आज कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया कि जो कोल गैसीकरण परियोजना है उसको बढ़ावा देने के लिए 37,500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत स्वच्छ कोयला उपयोग, ऊर्जा सुरक्षा और आयात पर निर्भरता कम होगी। हम सब जानते हैं कि आज के समय में जब तेल बिल्कुल अस्थिर हो गया है, उसकी कीमतें और रिसोर्सेस कम होते जा रहे हैं, तो ऐसे में दूसरे विकल्पों पर हम ध्यान दे रहे हैं। कैसे देखते हैं इस पहल को जो आज कोल गैसीकरण योजना को मंजूरी दी गई है?
3: जैसे कि तनेजा जी ने पहले ही बताया था कि भारत एक तेजी से विकसित होती हुई इकोनॉमी है और लगभग थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑयल और गैस का, तो इंडिया का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो एक बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी का है। और इकोनॉमी को यदि ग्रो करना है तो उसके लिए एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो है एनर्जी। और लकीली इंडिया में कोयले के काफी विशाल भंडार हैं, तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी पहल है कि हम कोल गैसिफिकेशन, अपने इंटरनल जो रिसोर्सेज हैं उसको किसी तरह इकोनॉमिकली सस्टेनेबल मैनर में यूज कर पाए, बिकॉज कोल के साथ जनरली ये कहा जाता है कि उससे एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन जो है वो बहुत ज्यादा होती है, एमिशन रेट इज वेरी हाई, बट यदि कोल गैसिफिकेशन होता है इंस्टीट्यूट तो आपको ना तो बड़ी बड़ी खदानें खोदनी पड़ेंगी।

0: जबकि हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं 25 से 30 ट्रिलियन इकोनॉमी जो कि 6 गुना के बराबर होती है आज के स्तर से, तो उसके लिए ये सब तरह के साधन और यदि डोमेस्टिक हैं तो ये सोने पे सुहागे की तरह है।
1: हम अपने श्रोताओं को बता दें कि कोयला गैसीकरण आपके लिए अगर नई चीज है तो ये होता क्या है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें कोयले को उच्च तापमान और दबाव पर ऑक्सीजन और पानी के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से युक्त सिनी गैस प्राप्त होती है जिसे औद्योगिक उपयोग के लिए संसाधित किया जा सकता है। ये पहल भारत की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत प्राकृतिक गैस, उर्वरक और रसायनों के आयात पर निर्भरता को कम कर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाना है। इस योजना के तहत प्रोजेक्ट का चयन एक पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना है। और इसी पर और जानकारी दी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: आज हम सब जानते हैं कि गैस का जितना रिक्वायरमेंट है और दुनिया भर में जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उस हिसाब से हम आत्मनिर्भर कैसे बने। भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है, करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था, उसका आज फैसला लिया गया है और बहुत ही सामूहिक फैसला है, बहुत ही टाइमली फैसला है, कोल गैसिफिकेशन की स्कीम। इस गैस से आगे उस गैस को जला के पावर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस गैस से एलपीजी का इक्विवेलेंट फॉर्म भी बना सकते हैं और उस गैस से हम फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग हो, कई सारे जो पेट्रोकेमिकल्स के माने जो एक रिफाइनरी में बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उसी तरह के बाय प्रोडक्ट्स यहां पर भी निकाले जा सकते हैं। तो एक तरीके से कोयले से गैस, गैस से फर्टिलाइजर, कोयले से गैस, गैस से पावर, कोयले से गैस, गैस से कई तरह के केमिकल्स, ये बनाने की ये प्रोसेस है और ये बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि इस युग में हमें जितना आत्मनिर्भर बने उतना अच्छा है और उतना ही देश के लिए भविष्य का बड़ा इंश्योरेंस बनता है।
1: नरेंद्र जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत सरकार ने हाल ही में इथेनॉल ब्लेंडिंग और ग्रीन हाइड्रोजन पर जोर दिया है। क्या ये ग्रीन फ्यूल्स आने वाले समय में, चाहे शॉर्ट टर्म की ही हम बात करें, कच्चे तेल की कीमतों के झटके को सहने में हमारी मदद कर सकते हैं?
3: कि हम बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, जैसे मैंने पहले कहा, और हमारी अर्थव्यवस्था जो है कुल मिलाकर के फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है। फॉसिल फ्यूल का मतलब हुआ तेल, गैस और कोयला, कोयला भी फॉसिल फ्यूल होता है। पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था 80% आज की तारीख में भी वो फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है, लेकिन क्योंकि हमारी निर्भरता तेल पे, गैस पे बहुत ज्यादा है अन्य देशों के मुकाबले अगर आप देखें तो, इसलिए हमारी कोशिश यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे रिसोर्सेज को ढूंढें जिससे हमारी आयात पर निर्भरता कम हो सके। हालांकि ये अलग बात है कि हमारी आयात पर निर्भरता एकदम कम होने वाली नहीं है, इसलिए क्योंकि हम बहुत तेजी से हमारा विकास हो रहा है, हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत तेजी से उसका विस्तार हो रहा है, इसलिए आने वाले समय में हमारे देश में तेल की जो जरूरत है वो भी बढ़ने वाली है, गैस की भी बढ़ने वाली है और कोयले की भी बढ़ने वाली है। लेकिन साथ में जो है हमने इथेनॉल जो ब्लेंडिंग करके उसमें जो लगभग 20% पेट्रोल में भी वो किया जाता है, डीजल में नहीं किया जाता, पर उससे हमने आयात में थोड़ी सी निर्भरता जो है कम करी है। ठीक उसी तरीके से जो देश होता है वो भविष्य की तरफ भी देखता है और जिसमें हाइड्रोजन को एक ऐसी ऊर्जा माना जाना है कि आने वाले समय के अंदर जो हमारा मिशन है कि एनर्जी इंडिपेंडेंस मतलब ऊर्जा की स्वतंत्रता हमको चाहिए 2047 तक, 2047 तक, उसमें हाइड्रोजन जो है एक फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है और उसमें बड़ी भूमिका वो निभाएगा। लेकिन ये दोनों चीजें जिसका भी मैंने जिक्र किया, इसका जो ये भविष्य के बारे में ज्यादा है, भविष्य का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 100 साल बाद, लेकिन अभी इनको थोड़ा समय लगने वाला है, हाइड्रोजन का को भी समय लगने वाला है, लेकिन ये है कि देश उस तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जो सबसे जरूरत चीज ये है वो है कि इस समय हमारी सरकार की कोशिश कि जो ऊर्जा की गरीबी के नीचे के लोग हैं उनको कैसे ऊर्जा उपलब्ध कराया जाए, उसके तहत एलपीजी हरेक को दी गई उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत, साथ में भी ये कोशिश है कि जो चाहे वो डोमेस्टिक कंज्यूमर हो या वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो या जो हमारी ऊर्जा एनर्जी की आवश्यकता है उसके लिए हमको क्या करना है, क्योंकि युद्ध जो है कब खत्म होगा ये कोई नहीं जानता, और खत्म भी हो जाएगा फिर भी उसका जो असर है हमारी अर्थव्यवस्था पे, विश्व की अर्थव्यवस्था पे, वो एक लंबे समय तक रह पाएगा। तो एक तरफ तो सरकार जो है इस बात की तैयारी कर रही है, फ्यूचर के लिए तैयारी हो रही है, भविष्य की तैयारी हो रही है, लेकिन साथ में जो वर्तमान है वर्तमान में भी पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां से जो है तेल लेके आया जा सकता है, प्राकृतिक गैस लेके आया जा सकती है, उसको लाया जा रहा है। उसके लिए दो चीजों का प्रयोग करा जा रहा है। एक तो ये कि हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, जो हमारी गुडविल है, जो G20 में हमारा दबदबा है, और इसके अलावा विकसित देशों में भी जो हमारा अच्छे संबंध है, जैसे क्वाड के अंदर है, उसको साथ में, इसके अलावा ब्रिक्स के

0: पर हैं। आपको पता है ब्रिक्स की मीटिंग विदेश मंत्री की जा रही है, जहां भी एक विषय रही है, रहने वाला है, वो सबका यूज करा जा रहा है जिससे कि जो तेल की जो सप्लाई है उसमें किसी तरह की बाधा ना आए। जो इस समय सरकार का सबसे बड़ा फोकस है कि सप्लाई डिसरप्शन नहीं होना चाहिए, और भारत उन गिने चुने देशों में है, खासतौर से विकासशील दुनिया में या ग्लोबल साउथ में, जहां अभी तक सप्लाई का डिसरप्शन आपने नहीं देखा है, खासतौर से तेल को लेकर के। एलपीजी में थोड़ी चुनौतियां आई हैं, लेकिन उसको भी काफी हद तक एड्रेस कर दिया गया है, काफी हद तक। तो मेरा ये मानना है कि हमको दो चीजें, एक तो प्रेजेंट और एक साथ में मीडियम टू लॉन्ग टर्म, और दूसरा फ्यूचर, ये तमाम चीजें जिसमें हमने जो कोल गैसिफिकेशन की बात करी, ये जो है मीडियम टारगेट्स में ज्यादा आती हैं और लॉन्ग टर्म की तैयारी में आती है कि आज से अगर 15 साल बाद 10 साल बाद वो हालात पैदा जो आज हैं, तो हम जो है काफी हद तक उसमें बिना किसी घबराहट के उसका जो है जो सोल्यूशन है वो देश के अंदर ही ढूंढ पाए। लेकिन हमको ध्यान रखना पड़ेगा जो ऊर्जा सुरक्षा है, एनर्जी सिक्योरिटी, वो आर्थिक सुरक्षा या इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बुनियाद होती है, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी की बुनियाद होती है। अगर आप तीनों सिक्योरिटीज को देखते हैं, सबके बॉटम में या बुनियाद में वो एनर्जी सिक्योरिटी होती है। एनर्जी के बिना कुछ नहीं मूव करता, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वो परिवार हो या समाज हो, मोहल्ला हो, शहर हो, देश हो, बिना एनर्जी के कुछ नहीं चलता। और इसलिए सरकार की पूरी कोशिश है कि दुनिया में चुनौतियां आती रहती हैं, ये तो सुनामी जैसी चुनौती है, तमाम अर्थशास्त्री इसको जो है एनर्जी कोविड के नाम से बुला रहे हैं, यूरोप में कुछ अर्थशास्त्री इसको जो है इकोनॉमिक कोविड के नाम से बुला रहे हैं, लेकिन भारत ने जिस जिम्मेदारी और मुस्तैदी से इसका जवाब दिया है, देश को तैयार किया है। और अब अगर प्रधानमंत्री की स्पीच को देखें तो प्रधानमंत्री ने आम जनता से संवाद किया है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करी है खुले प्लेटफॉर्म पर। प्रधानमंत्री की ब्रेन स्टॉर्मिंग और संवाद यह है, दुनिया में ऐसा ऐसा हो रहा है और हमको उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। हो सकता है इतनी जरूरत ना पड़े, लेकिन प्रधानमंत्री वो देश से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, खुल के जैसे डेमोक्रेसी में होना चाहिए ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि दुनिया के हालात क्या है और हम जो है कैसे कैसे हमने जो है इसकी तैयारी करनी चाहिए। उनके विचार जो है वो आम आदमी से साझा कर रहे हैं, इसी को लोकतंत्र कहते हैं।
1: जी हाँ बिल्कुल। और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत ने काफी प्रगति की है और आने वाले वर्षों में हमें इसमें और सफलता मिलने की उम्मीद है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। ग्रीन हाइड्रोजन विल अल्टीमेटली सक्सीड वेयर देयर इज लोकल डिमांड, देयर इज लोकल प्रोडक्शन एंड देयर इज लोकल कंजम्पशन, एंड देयर आर नॉट मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड एज यूनिकली क्वालिफाइड as India is to make that happen. We set ourselves a target of producing 5 million tons of green hydrogen annually by 2030, supported by strong policy frameworks and a significant financial outlay.
1: सुभाष जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, जब पश्चिम एशिया का संकट है और दुनिया के कई देश प्रभावित हो रहे हैं और भारत भी इससे अलग नहीं है, ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर आने वाले समय में आप और किस तरह की पहल की उम्मीद कर रहे हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या निजी कंपनियों की तरफ से?
3: जी, ये आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया। एक्चुअली जहां तक ऊर्जा सुरक्षा की बात है और जिस तरह का ये क्राइसिस है, उसमें सबको आगे आना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो अपने स्तर पे इमीडिएट बेसिस पे कर सकती थी वो कर रही है और आगे भी करती रहेगी। अभी क्योंकि देश को आगे बढ़ना है और उसके लिए बड़ी क्लैरिटी है कि अगले 25 साल में कहाँ जाना है और 2070 तक कहाँ जाना है, वो क्लैरिटी है। तो इसके लिए मैं जो कुछ चीजें समझता हूं कि बहुत जरूरी है, एक तो जो एनर्जी एफिशिएंसी है, टू बी एबल टू, जो एग्जिस्टिंग एनर्जी जितनी कंज्यूम हो रही है उससे जितना ज्यादा से ज्यादा वर्क या आउटपुट ली जा सके, दैट शुड बी आइटम ऑन प्रायोरिटी। जो दूसरा इश्यू है वो जो डोमेस्टिक एंडोमेंट्स है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, उनको किसी तरह यूज करके यदि हम अपनी जो ऊर्जा की सप्लाई है उसको बढ़ा पाए। और इसमें मिसाल जैसे आपने एथेनॉल की दी, मैं एक्चुअली उससे एक स्टेप और आगे जाऊंगा। सीबीजी एक ऐसा पोटेंशियल है जो आइडेंटिफाइड है और 15 मिलियन टन का गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सतत प्रोग्राम एनविसेज किया था। टोटल पोटेंशियल जो है वो लगभग 62 मिलियन टन का है। तो अब क्योंकि इस तरह की स्थिति में वो एक एरिया होगा जहां हम ट्रिगर करें और जो सीबीजी का पूरा पोटेंशियल है उसको यूज करें, और ये सबसे लो कॉस्ट ऑप्शन होगा फॉर द रीजन कि सारा कंट्री लकीली सीजीडी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। तो आपको सेपरेट सप्लाई चेन्स नहीं बनानी है, सप्लाई चेन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। यदि आप डोमेस्टिक सप्लाई को बढ़ा सकते हैं तो देश को ही जो किसान है और जो गांव है हमारे, क्योंकि सीबीजी लार्जली उन एरियाज में प्रोड्यूस होगी, तो उसके लिए बहुत बड़ा एक

0: साधन बनेगा। तीसरा जो है, जो देश में बाकी जितने साधन है, चाहे वो हाइड्रोजन की बात हो रही है, आपकी सोलर की बात है, या इवन थर्मल पावर की बात है, सब जो है वो इस टाइम ट्रिगर करने के लिए एक दीर्घकालीन प्रोग्राम बनाना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि आगे कोई इस तरह का डिसरप्शन आता है। ऑफकोर्स इस बार भी इंडिया ने उसको बड़ा बखूबी फेस किया है, पर क्योंकि आने वाले समय में 10 साल बाद लेट से यदि इकोनॉमी 2.5-3 गुना हो जाती है, तो उस स्थिति में आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम से कम दुगनी होगी, और यदि वो दुगनी होगी तो आप डोमेस्टिकली कितनी प्रोड्यूस कर सकते हैं वो होना चाहिए। और एक जो बात है, जो पिछले कुछ सालों में अच्छा भला देश ने काफी ऑयल और गैस प्रॉपर्टीज भी काफी एक्वायर की थी दुनिया में, और वो एक बहुत बड़ा कुशन की तरह काम कर सकती हैं, तो हमें स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन ऑफ एसेट्स जो है वो कंटिन्यू करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मतलब यदि आप कोशिश करिए कि आपका अपने रिसोर्सेज हो, पर यदि वो बाई चांस आपके वो एडिक्वेट नहीं है, तो कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट आपको ग्लोबली इतनी ओनरशिप है कि जब जरूरत पड़े तो आप इंडिया को भेज सकें। तो और कोल गैसिफिकेशन तो एक बहुत ही बढ़िया कदम है जो उठाया जा रहा है, और यदि इसका ही भी पोटेंशियल और कंट्रीब्यूशन काफी रहेगी, तो मैं सोचता हूँ ये 4-5 चीजें डेफिनेटली गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में होंगी, और काम ऑलरेडी चल रहा है, तो ये काफी कंट्रीब्यूट करेंगी एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ।
1: और हम बात कर रहे हैं ऊर्जा सुरक्षा की, और देशवासियों की चिंताओं को लेकर लगातार अंतर मंत्रालयीय संवाददाता सम्मेलन हो रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि भारत की क्या स्थिति है ऊर्जा को लेकर।
2: वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते, जैसा आप जानते हैं कि ऊर्जा आपूर्ति वर्ल्ड सप्लाई डिस्ट्रप्शंस हुए हैं ऊर्जा आपूर्ति में, और इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी प्राइस वॉलेटिलिटी देखी जा रही है, परंतु भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि आम उपभोक्ता को कम से कम असुविधा के साथ फ्यूल सप्लाई की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। और इन सभी जो स्टेप्स लिए हैं उनके फलस्वरूप हमारी क्रूड इन्वेंट्री मेंटेन है, टाइड अप है, हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही है, किसी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर भी कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं, और घरेलू कुकिंग के लिए एलपीजी की आपूर्ति की जा रही है।
1: नरेंद्र जी, कार्यक्रम में समय बहुत ज्यादा नहीं है, आपसे एक सवाल पर संक्षिप्त टिप्पणी आपसे चाहेंगे कि तेल की कीमतों में जो अस्थिरता का असर हो रहा है भारतीय रुपए और करंट अकाउंट डेफिसिट पर, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि तेल व्यापार के लिए रुपया पेमेंट मैकेनिज्म, जिसकी चर्चा कुछ समय से चल रही है, इसको और प्रभावी बनाने से कुछ राहत मिल सकती है?
3: नहीं, अच्छा प्रश्न है और काफी इसकी चर्चा भी है, लेकिन ये जो हमारे जो कुल मिला के संबंध है पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों से, उस पर डिपेंड करेगा हम उसको कैसे बैलेंस करते हैं। अमेरिका से हमारे बड़े अच्छे संबंध है, सामरिक संबंध है और लॉन्ग टर्म संबंध है, हम क्वाड के मेंबर हैं और अमेरिका को हम चाहते हैं या ज्यादा और निवेश करे, और वो जो फ्री वर्ल्ड जिसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, उसका अमेरिका काफी उसमें दबदबा है, और अमेरिका जो है वो पेट्रो डॉलर को मजबूत रखना चाहता है, वो बड़ी आपत्ति करता है अगर कोई लोकल करेंसीज में तेल खरीदता है, लेकिन हमको अपने राष्ट्रीय हित देखने हैं, और पिछले दिनों हमने रूस के साथ तमाम जो डील हुई है उसमें रुपये की बड़ी भूमिका रही है, और इस तरीके की बातचीत कुछ अन्य देशों से भी चल रही है, लेकिन कुल मिलाकर के हमको बैलेंस बना के चलना होता है राजनीति के अंदर, क्योंकि तेल के बारे में कहा जाता है तेल 90% जियोपॉलिटिक्स है, तो उसमें हमको उसको भी बैलेंस रखकर चलना है, लेकिन साथ साथ मुझे लगता है आवश्यक हमारे लिए यह है कि हम एक लॉन्ग टर्म जो हमारा प्लान रहेगा उस पर और थोड़ा जोर डालें, देश के अंदर जो तेल का खनन है, उत्पादन है, उसको और इंसेंटिवाइज करें, विदेशों में जाकर के जहां भी तेल के भंडारों में हम हिस्सेदारी खरीद सकते हैं उसको थोड़ा और एग्रेसिवली खरीदें, और साथ में जो रिन्यूएबल एनर्जी को हम काफी जोर दे ही रहे हैं, लेकिन हमको यह भी साथ में समझना पड़ेगा कि हमारी देश का जो प्रगति है, जो हमारा विकास, उससे तो हम समझौता कर नहीं सकते, और आने वाले समय के अंदर हमें और तेल की जरूरत पड़ेगी हमारी अर्थव्यवस्था को, और गैस की भी जरूरत पड़ने वाली है, और ये सारा कुछ सौभाग्य से हमारे आसपास के देशों में उपलब्ध है, खासतौर से खाड़ी के देशों में। एक नया वेस्ट एशिया बनेगा, ये जब भी युद्ध समाप्त होता है ईरान की अर्थव्यवस्था शायद खुलेगी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से जो है वहां नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, सऊदी अरब का रवैया जो बड़ा कड़ा रहा है वो थोड़ा नरम पड़ेगा, तो मुझे लगता है हमारे देश के आसपास ही नई संभावनाएं जो है उनका शीघ्र जन्म होगा और हमको देखना पड़ेगा क्या वहां से हम पाइपलाइन बना सकते हैं या हम अपने एलएनजी टैंकर बना सकते हैं, अपने टैंकर्स बना सकते हैं, बहुत सारी इसमें

0: चीजें हैं, तो मुझे लगता है युद्ध तो है, लेकिन युद्ध में हमको देखना है कि अवसर क्या है। और हमारे इतने अच्छे संबंध हैं तमाम देशों से जो तेल के बड़े निर्यातक हैं, और साथ में हमारी जो भारत की जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, अपने विजन में बिल्कुल क्लियर है। तो मुझे लगता है कि हमको चिंता का विषय नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि समय के साथ साथ जरा थोड़ा हमको इस दिशा में खासतौर से एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ थोड़ा और स्मार्टली और तेजी से बढ़ना पड़ेगा।
1: जब हमारे आपके परिवार पर संकट आता है तो हम अपने अभिभावकों की तरफ देखते हैं और उनके दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी समझते हैं। जब पश्चिम एशिया में संकट है तो भारत के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों से अपील की है कि वो टीम इंडिया की तरह एकजुट होकर इसका सामना करें। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: देश का हित, देश के लोगों का हित, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। आप देख रहे हैं कि इस समय वैश्विक स्तर पर किस तरह की चुनौतियां हैं। वेस्ट एशिया में संकट की स्थितियां लगातार बनी हुई है। युद्ध के इस माहौल का बहुत नकारात्मक असर पूरे विश्व पर पड़ा है और भारत भी इससे प्रभावित हो रहा है। देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य में हमें अपना संयम भी बढ़ाना होगा। हमें मिलकर संसाधनों को बचाना होगा, देश के हितों की रक्षा करनी होगी। जिस तरह कोरोना काल में हमने संकटों का मिलकर सामना किया था, वैसे ही देशभक्ति की भावना से हमें फिर एक बार भारत को इन वैश्विक संकटों से निकालने के लिए एक साथ खड़ा होना ही होगा।
1: कहते हैं संकट ही समाधान की जननी है। पश्चिम एशिया की ये चुनौतियां भारत को याद दिलाती हैं कि हमारा रास्ता आत्मनिर्भरता की ओर ही जाता है। चाहे वो हमारी सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों, रेलवे का सोलर विजन हो, या फिर रेगिस्तानों के नीचे छुपा हमारा सामरिक तेल भंडार, भारत अपनी सुरक्षा की कहानी खुद लिख रहा है। पश्चिम एशिया की रेत में भले ही हलचल हो, लेकिन भारत का संकल्प अडिग है। हम न केवल इस संकट से उबरेंगे बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया को एक नई राह भी दिखाएंगे। सुभाष जी आपका, नरेंद्र जी आपका, आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: थैंक यू,
3: धन्यवाद।
1: आप ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है।